सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1947 की वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई 2026। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रहे। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि हो चुके हैं। जिसके पास ये तीन चीजें हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता। ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, केवल तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त 117 से वाचन। ऋषि हैं भिक्षु आणिरस, देवता हैं धन अत्र दान प्रशंसा, छंद है त्रिष्टुप एवं जगति।
2: न वा उदेवाः क्षुधमिद्वधम् दुदुरुताशि तमुप गच्छन्ति मृत्यवः उतो रैः प्रणतो नोप दस्यत्यु ता प्रणन्मर्डितारं न विन्दते। देवताओं ने जो क्षुधा भूख या तृष्णा की रचना की है, वह कष्टकारिणी है। अन्न भक्षण करने वाले को भी मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। दूसरे के प्रति दान देने वालों के धन की कभी क्षति नहीं होती। दूसरों के प्रति दान न देने वालों को कोई सुखी नहीं कर सकता। या आध्राय चकमानाय पित्वोन्नवान सन्रभितायोप जग्मुषे स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्स मर्डितारं न विन्दते। जिस समय कोई भूख से पीड़ित मनुष्य भिक्षा के भाव से उपस्थित होकर अन्न याचना करता है, उस समय जो अन्नवान होकर भी हृदय से निष्ठुर बनकर याचक के सामने ही भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे संकीर्ण वृत्ति के लोगों को कोई सुखदाता नहीं मिलते, अर्थात वे आत्मिक सुख संतोष से सदैव वंचित रहते हैं। स इद भोजो यो ग्रहवे ददात्यन्न कामाय चरते क्रशाय अरमस्मै भवति यामहूता उता परीषु कृणुते सखायम्। अन्न की अभिलाषा से किसी गरीब व्यक्ति की भिक्षा याचना पर जो अन्नदान करते हैं वे ही सचमुच दाता हैं। उन्हें संपूर्ण यज्ञों के फलों की प्राप्ति होती है तथा वे शत्रुओं के बीच में भी मित्र भाव को प्राप्त करते हैं। न स सखा यो न ददाति सख्ये सचा भुवे सच मानाय पित्वः अपास्मात् प्रेयान्न तदोको अस्ति प्रणंत मन्यमरणम् चिदिच्छेत। अपने साथी के समीप आने पर जो मित्र होकर भी उस मित्र व्यक्ति को अन्नदान नहीं करते, ऐसे कृपण मनुष्य का परित्याग करके दूर जाना ही उचित है। उसका गृह निवास योग्य नहीं है। ऐसे समय किसी श्रेष्ठ स्वामी के पास जाना ही श्रेयस्कर है। प्रणीयादिन नाधमानाय तव्यांद्राघीयां समनु पश्येत पंथाम ओ ही वर्तन्त्ये रथ्येव चक्रान्य मन्यमुप तिष्ठन्तरायः। समर्थ मनुष्य को चाहिए कि याचना भाव से आने वाले को निश्चय ही धनादि दान द्वारा संतुष्ट करें। ऐसे दाता को स्वर्गीय सुपथ प्राप्त होते हैं। ऊपर नीचे परिभ्रमण करने वाले रथ चक्र के समान ही धन संपदा कभी स्थिर नहीं होती, वह एक दूसरे के पास आती जाती रहती है। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वध इत्स तस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। जिनके हृदय उदारता रहित संकीर्ण है उनका अन्न धन पाना निरर्थक ही है। उनका अन्न मृत्यु के समान ही विषैला है, यही सच्चाई है। जो न तो देवों को हविष्यान्न अर्पित करते हैं, न बंधु बांधवों को देते हैं, जो मात्र स्वयमेव खाते हैं वे केवल पापान्न को ही ग्रहण करते हैं। कृशन नित्फाल आशित कृणोति यन्नध्वानमप वृंते चरित्रैः वदन ब्रह्मा वदतो वनीयान प्रणन्नापिर प्रणन्तमभिष्यात। कृषि कार्य करते हुए जो हल से भूमि को गहराई से जोतते हैं वही कृषक अन्न उत्पादन करते हैं। वही अपने मार्ग से जाकर अपने कर्मों द्वारा अपने स्वामी के लिए अन्न प्राप्त करते हैं। जैसे वेदज्ञ ब्राह्मण अज्ञानी मनुष्यों से उत्तम है, उसी प्रकार दानी मनुष्य दान रहितों से सदैव श्रेष्ठ होते हैं। एक पाद भूयो द्विपदो विचक्रमे द्विपाद त्रिपादामभ्येति पश्चात चतुष्पादेति द्विपदामभिभिस्वरे संपश्यन् पंक्ति रूपतिष्ठमानः। जिनके पास धन संपदा का एक भाग है वे दो भाग संपदा की कामना करते हैं। दो भाग वाले तीन भाग वाले धनाढ्यों के पास जाते हैं, तीन भाग वाले चार भाग वाले के पास, तथा चार भाग संपदा वाले इससे भी अधिक संपदा वाले के समीप गमन करते हैं। इस प्रकार ये धन संपदा वालों की श्रृंखला बनी हुई है। अल्प संपदा युक्त अपने से अधिक धनवान बनने की आकांक्षा करते हैं। समौ चिद्धस्तौ न समम विविष्टः सम्मातरा चिन्न समम दुहाते यमयोश्चिन्न समावीर्याणि ज्ञाति चित्संतौ न समम प्रणीतः। हमारे दोनों हाथ एक जैसे होते हुए भी धारण क्षमता से समान नहीं होते। एक माता से जन्म लेने वाली गौवों की दूध की मात्रा समान नहीं होती। दो जुड़वां भाई भी बल से एक समान नहीं होते। एक कुल की संतान होकर भी दोनों की दान भावना समान नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की महानता बाह्य परिस्थितियों की अपेक्षा आंतरिक संस्कारों पर अधिक निर्भर करती है। एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी जो चाहे वह अपने अंदर महानता को जागृत कर सकता है।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज आपने सुना ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त 117 से वाचन। वाचन कर रहे थे पंडित नीलम त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया। उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज मैं अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 9वीं कड़ी लेकर आपके साथ हाजिर हूं। फिर से एक बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था, गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में 23 और 24 जून को ये युद्ध लड़ा जा रहा था। नर्मदा और गौर नदी के मध्य की नरई घाटी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थानों पर इस प्रकार खड़ी कर दी कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों तरफ से उन पर हमला बोल दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। हाथी और घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष बाण, तीर तलवारों और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज गया। युद्ध समाप्त होने को था। गोंड सेनापति पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। दोनों ही सेनाओं में अनेक सैनिक हताहत भी हुए। रानी दुर्गावती की हाथी सेना का संचालन फौजदार अर्जुन सिंह बखीला कर रहे थे। उनका नाम अर्जुन सिंह बैस या अर्जुन सिंह बघेल भी मिलता है। उस समय सेना में हाथियों का बड़ा महत्व था। फौजदार अर्जुन सिंह बखीला संपूर्ण हाथी सेना का संचालन करते रहे और बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन शाम होते होते इस युद्ध में फौजदार अर्जुन सिंह बखीला वीर गति को प्राप्त हो गए। ये गोंड सेना के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। लेकिन इतनी बड़ी क्षति होने के बाद भी आखिर सूरज ढलने से पहले रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की तरफ धकेल दिया। आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची मुगल सेना के साथ घाटी से जान बचाकर वापस भागने लगे, और इस प्रकार गोंड रानी दुर्गावती की विजय हुई। पूजा जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों की ओर से आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, गोंड रानी दुर्गावती की यहाँ पर विजय हुई, तो इस विजय से तो गढ़ा की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई होगी।
1: जी हाँ, ये खुशी की बात तो थी ही, रानी दुर्गावती की विजय हुई थी
0: जी,
1: और गढ़ा राज्य की विजय हुई थी। यह विजय भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखती है
0: जी।
1: निश्चित ही गढ़ा की सेना में खुशी की लहर तो दौड़ी गई होगी
0: जी,
1: किंतु नेतृत्व कर रही रानी दुर्गावती और उनके सेनापतियों ने संयम नहीं खोया। रात को गढ़ा की सेना के खेमे में आज के युद्ध के बारे में समीक्षा की गई
0: जी,
1: और अगले दिन की योजना भी बनाई जाने लगी
0: जी।
1: इधर रात होने से पहले ही मुगल सेनापति आसफ खां की विशाल मुगल सेना नरई के निकट पहुंच चुकी थी, और सेना ने पास में ही अपना शिविर गाड़ लिया था। इसलिए अगले दिन सेनापति आसफ खां की विशाल सेना से सामना होना निश्चित था।
0: तो मतलब ये बात रानी के पास पहुँच चुकी थी कि आसफ खां भी वहाँ अपनी सेना लेकर आ रहा है।
1: बिल्कुल। तो अब जो योजना बनाई जानी थी वो उसी हिसाब से बनाई जानी थी कि अगले दिन आसफ खां की विशाल सेना के साथ में युद्ध करना होगा। तो योजना बनाते समय बीच में एक सुझाव आया
0: जी,
1: कि क्यों ना मुगल सेना के शिविर पर रात को ही धावा बोल दिया जाए
0: जी।
1: थकी हुई सेना पर रात के अंधेरे में चारों ओर से धावा बोलकर आसान जीत हासिल की जा सकती थी, लेकिन गढ़ा की सेना इससे सहमत नहीं हुई। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध भी था, इसलिए एक मत से इसे नकार दिया गया।
0: वाह पूजा जी, आपने हमारे पिछले एपिसोड में भी हमें बताया था कि हमेशा से हम युद्ध कला कहते आ रहे हैं, कोई युद्ध सिर्फ एक कोई शब्द होता ही नहीं। आपने बताया था इतिहास में हम इसे युद्ध कला के नाम से जानते हैं, और कला हमेशा नियमों से बंधी हुई होती है, तो इसी वजह से शायद ये भी बात यहाँ पर हुई। और देखिए कितनी अच्छी बात है श्रोताओं, कि हम अपने दुश्मन पर भी पीठ पीछे हमला नहीं करते। रात के वक्त थके हुए सैनिकों पर हमला करना एक अच्छा मौका हो सकता था रानी के लिए, एक बहुत अच्छा अवसर था रानी दुर्गावती के लिए, क्योंकि उनके पास सेना कम थी और आसफ खां की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने युद्ध के मैदान में ही जंग करना उचित समझा। तो पूजा जी, अगले दिन क्या हुआ, किस तरह युद्ध आरंभ हुआ और क्या क्या हुआ?
1: सुबह हुई और नरई की घाटी में विशाल मुगल सेना प्रवेश कर गई
0: जी।
1: दूसरी ओर गढ़ा की सेना भी दलबल के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। योजना के अनुसार आज के युद्ध का नेतृत्व गढ़ा राज्य के उत्तराधिकारी राजा वीर नारायण को करना था। जैसी कि हमने पहले भी बात की थी कि वह इस समय सिर्फ 16-17 वर्ष के रहे होंगे। गढ़ा के सैनिक भी पूरी तैयारी से थे। मैंने एक लोकगीत में सुना था कि जब गौंड सैनिक युद्ध के लिए तैयार होते थे तो वे एक खास फूल का रस अपने कपड़ों पर छिड़कते थे।
0: अच्छा।
1: इस फूल का रस भगवा रंग का हुआ करता था और भगवा छींटे सभी सैनिकों में उत्साह का संचार करते थे।
0: वाह, क्या बात है।
1: तो युद्ध आरंभ हुआ। गढ़ा की ओर से राजा वीर नारायण ने सेना की कमान संभाली। उनकी ओर से शम्स खां मियाना और मुबारक बिलूच भी बहादुरी से युद्ध का संचालन कर रहे थे।
0: जी, ये वही अफगानी लड़ाके थे जो रानी से परास्त होकर उनकी सेना में शामिल हुए थे।
1: बिल्कुल, ये वही थे।
0: जी।
1: दूसरी ओर से मुगल सेनापति आसफ खां की सेना भी पूरे दमखम के साथ लड़ी। युद्ध में धनुष बाण तीर तलवार बरछे भाले की टनकार लगातार गूंज रही थी। दोनों सेनाओं के सैनिक हताहत भी हो रहे थे। समय के साथ युद्ध की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। घोड़े पर सवार राजा वीर नारायण भी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। तभी उन्होंने मुगल सेना को घाटी से पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त कर ली, किंतु कुछ समय बाद मुगल सेना ने फिर से आक्रमण कर दिया और वीर नारायण ने फिर उन्हें परास्त कर दिया और पीछे धकेल दिया। यह क्रम 3 बार चला। तीसरी बार भी राजा वीर नारायण ने मुगल सेना को परास्त किया और उन्हें नरई की घाटी से पीछे भागने पर मजबूर कर दिया।
0: वाह, तो इसका मतलब जो वीर नारायण थे, कुंवर वीर नारायण, राजा वीर नारायण, वो सिर्फ 16-17 साल के थे और उस उम्र में इतना शौर्य, इतना पराक्रम, तो मतलब शुरू से वो भी युद्ध कला में पारंगत किए गए थे।
1: जरूर, युद्ध कला में शस्त्रों अस्त्रों में उन्हें पारंगत किया ही गया होगा।
0: जी,
1: उसका विद्या अध्ययन उन्होंने किया ही होगा। अब युद्ध आगे बढ़ा।
0: जी।
1: और चौथी बार मुगल सेना फिर से जोर लगाते हुए अधिक संख्या में दोबारा नरई में प्रवेश कर गई।
0: जी।
1: लेकिन जैसा हम जानते हैं कि आसफ खां के साथ तोपखाना भी आया था।
0: जी।
1: और अब तक तोपखाना भी पूरा सजा लिया गया था। तोपें आग उगलने के लिए तैयार हो गई थी और आग उगलने लगी थी। दोपहर का समय हो रहा था। युद्ध अपने जोरों पर था। अचानक से राजा वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो गए। जैसे ही रानी को यह पता चला, उन्होंने युद्ध की कमान अपने हाथों में ले ली। उनके विश्वस्त सेनापतियों ने वीर नारायण को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से निकालने की जिम्मेदारी उनके महावत पर सौंपी।
0: जी।
1: गढ़ा की सेना की कुछ टुकड़ियां वीर नारायण को घेर कर इस प्रकार युद्ध लड़ती रही कि शत्रु सेना को पता भी नहीं चला और राजा वीर नारायण को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया।
0: जी।
1: किसी भी युद्ध में राजा का बचना अनिवार्य है।
0: जी।
1: यदि राजा ही मर जाए तो फिर युद्ध तो समाप्त हो जाता है और दूसरी ओर की सेना जीत जाती है।
0: लेकिन पूजा जी, जब राजा वीर नारायण को सुरक्षित नरई से निकाल लिया गया तो फिर तब सेना का संचालन ऐसी स्थिति में किसने किया?
1: राजा वीर नारायण के युद्ध क्षेत्र से चले जाने के बाद युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली। उनके सेनापति तो युद्ध लड़ ही रहे थे। रानी दुर्गावती अपने प्रशिक्षित हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन करने लगी। उनके हाथी का नाम सरमन था और सरमन के महावत का नाम आधार सिंह बखीला था।
0: अच्छा।
1: जिन्हें बघेला भी कहा जाता है।
0: जी।
1: युद्ध जोरों पर था। खूब जोर शोर से लड़ाई हो रही थी। भीषण युद्ध चल रहा था। रानी दुर्गावती पूरे पराक्रम से लड़ रही थी। शाम होने को थी और एक लोकगीत है। लोकगीत में इस समय का वर्णन हमको मिलता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाती हूँ कि काली को रूप बनाए के दुर्गा झपटत जाए, काली को रूप बनाए के दुर्गा झपटत जाए, रक्त लोहू के नदिया हो तुरते दईस है रे बहाय। यानी कि रानी जो है वो काली के रूप में,
0: जी,
1: दुर्गा के रूप में दूसरे शत्रु सेना पर झपट रही हैं और रक्त की नदियां बह रही हैं।
0: जी।
1: अड़े रहो सब मग में हो या सबे ला सिखाए, जीत के डंका बजाए के माता मन मुस्काए। ऐसी तरह जीत रही हैं शत्रु सेना पर, ऐसी भारी पड़ रही हैं कि वो मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और सबसे कह रही हैं कि डटे रहो, जीत हमारी होगी।
0: बिल्कुल। रणमा जूझे धरे तलवार, रणमा जूझे धरे तलवार, माता दुर्गा कहाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए। ये भी एक साला लोकगीत हमें पूजा जी ने ही बताया था। तो पूजा जी, फिर आगे युद्ध किस तरह से आगे बढ़ा?
1: दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध हो रहा था। और युद्ध इस स्तर पर पहुंच गया कि अब निर्णय होने को ही था
0: जी।
1: कि अचानक हाथी सरमन पर बैठी रानी दुर्गावती को युद्ध के दौरान एक तीर दाईं कनपट्टी पर जा लगा। रानी ने उस तीर को अपने हाथों से निकालकर फेंक दिया। इस बीच शत्रु सेना ने अपना शिकंजा और जोर से कस दिया, उन पर नुकीले और जहर भुजे तीरों की बौछार कर दी
0: जी।
1: इससे पहले कि रानी संभल पाती, एक दूसरा तीर रानी दुर्गावती की गर्दन में जा धसा
0: जी।
1: और एक और तीर उनके सीने को बेधते हुए निकल गया। इतने तीर एक साथ लगने से रानी मूर्छित होने लगी, किंतु इस अवस्था में भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उनका बचना अब असंभव है, किंतु वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि यदि वह जीवित अवस्था में भी मुगल सेना द्वारा बंदी बना ली गईं, तो उनके साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार होगा
0: जी।
1: जैसा कि उस समय होता भी था। यह तो फिर युद्ध क्षेत्र में लड़ती हुई रानी थी, इनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी
0: जी।
1: यहाँ रानी के साथ होने वाला दुर्व्यवहार सिर्फ उनका ही अपमान नहीं था, बल्कि गढ़ा राज्य की प्रजा का अपमान था। शत्रु सेना द्वारा अपनी रानी के साथ घृणित व्यवहार करते प्रजा से देखा नहीं जाता, रानी अपने गढ़ा और अपनी प्रजा का अपमान होते हुए नहीं देख सकती थी।
0: निश्चित रूप से एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी रानी के समक्ष, वो मूर्छित होने को थी, पूरी तरह से मूर्छित नहीं हुई थी और जान का खतरा उन पर मंडरा रहा था, वो ये बात जानती थी। उसके बाद भी उनका जीवट इतना बड़ा था, उनकी जिजीविषा इतनी बड़ी थी कि वो जीते जी तो अपने आप को दुश्मन के हाथ में नहीं सौंपना चाहती थी, ताकि गढ़ा के लोगों का अपमान न हो। वाह क्या बात है, धन्य है रानी दुर्गावती। तो पूजा जी, जैसा कि आपने बताया उस समय हारे हुए लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, खास तौर पे जो मुगल थे उनका इस तरह का कुछ जो भी बर्बर तरीके थे, क्या उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: जैसा हम जानते हैं, जब मुगल सेनाएं जीतती थीं तो वह उन महिलाओं के साथ भी घिनौना कृत्य करती थी जो युद्ध में शामिल भी नहीं होती थी
0: जी।
1: जीत के बाद मुगल सेनाएं गाँव और कस्बों में घुस जाती थी और खेतों और खलियानों को नष्ट कर देती थी। घोड़े हाथी सैनिकों के पैरों तले हरी भरी फसलें रौंद दी जाती थी, उनमें आग लगा दी जाती थी, जिसके हाथ जो लगता था वह निर्दोष लोगों से लूट लेता था। मंदिरों मठों पर हमला बोलकर उन्हें ध्वस्त किया जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, जो विरोध करता था उसके साथ बड़ा ही घृणित व्यवहार किया जाता था, जबरदस्ती धर्मांतरण होते थे, बड़ा ही भयावह और घृणित दृश्य होता होगा। मंदिरों महलों घरों खेतों खलिहानों में रखे धन संपदा अनाज की लूटपाट तो होती ही थी, स्त्रियों बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसका तो वर्णन करना भी असंभव है। उनका जितना अपमान शारीरिक मानसिक तौर पर किया जा सकता था वह सभी किया जाता था, इसलिए ही तो जौहर प्रथा आरम्भ हुई। स्त्रियां घिनौने शत्रुओं के हाथ लगे इससे पहले वे आग में जलकर या जल समाधि लेकर या किसी भी प्रकार से स्वयं को खत्म कर लेती थीं, जौहर कर लेती थीं। और यहाँ नरई में तो मामला ही गंभीर था, यह तो रानी दुर्गावती थी, वह भी युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक गढ़ा का नेतृत्व करते हुए युद्ध लड़ती हुई रानी
0: जी।
1: उसे तो वह कतई नहीं छोड़ते
0: जी।
1: यदि वह जीवित बंदी बना ली जाती तो उनके साथ होने वाले घृणित अपराध के बारे में तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था
0: जी।
1: यदि युद्ध में इस प्रकार किसी का मृत शरीर भी प्राप्त होता था तो उसके साथ शिरोच्छेद या अंगोच्छेद आदि घृणित कार्य किए।
0: कितने विभत्स दृश्य रहे होते होंगे जो हमें इतिहास के पन्नों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसे देखकर पढ़कर जो अभी हम महसूस कर रहे हैं वही रोंगटे खड़े। कर देने वाला है, तो उन दृश्यों की तो शायद हम वाकई कल्पना भी नहीं कर सकते। पूजा जी, फिर जब रानी को तीर गर्दन में लगा, एक तीर उनके सीने के पार हो गया, वो मूर्छित होने लगी, तो तब क्या हुआ युद्ध का, क्या हुआ सेना का?
1: जब रानी को एक तीर गर्दन में और दूसरा तीर सीने पर लगा तो रानी लहूलुहान हो गई और मूर्छित होने लगी। तब रानी दुर्गावती ने अपने महावत आधार सिंह बघेला को कहा कि वह अपनी कटार निकाले और उनके जीवन का अंत कर दे।
0: जी।
1: किंतु महावत आधार सिंह बघेला तो उन्हें अपनी माँ जैसा मानते थे।
0: जी।
1: वह अपनी माँ को कैसे मार सकते थे। उन्होंने रानी दुर्गावती के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि वह ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकते।
0: जी।
1: वह अपनी माँ को अपनी कटार से नहीं मार सकते। उन्होंने हाथ जोड़कर रानी से निवेदन किया कि उन्हें किसी भी प्रकार से बचाकर वह युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। रानी दुर्गावती सिर्फ उन्हें आज्ञा दें, वह कैसे भी अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा ले जाएंगे, शत्रुओं के हाथ नहीं लगने देंगे।
0: जी।
1: किंतु रानी जानती थी शत्रु सेना के अनेक सेनापति उन्हें चारों ओर से बुरी तरह से घेर चुके हैं।
0: जी।
1: सभी उन पर निशाना साधे हुए हैं। महावत आधार सिंह बघेला कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अब रानी दुर्गावती को बचाना असंभव था।
0: और फिर रानी दुर्गावती तो रणक्षेत्र को छोड़कर, अपनी सेना को छोड़कर वैसे भी वहां से नहीं जाती।
1: जी हाँ।
0: देखिए श्रोताओं, इसलिए उनके बारे में आज भी हमें लोकगीतों से जो जानकारी प्राप्त होती है वो कुछ इस तरह की है। रणमा जूझे धरे तलवार, माता दुर्गा कहाए, नाम आसफ दुश्मन के, गई से धरी धरी हार, सज धज के आवे तिसरैया, फौजी धरे हथियार, ताक नसाना महारानी के हो नहीं काई उपचार, जख्मी चोट लगे से सतन माँ, बही रक्तन के धार, जोर फिरंगी माथा माँ, मोहे नहीं जावे आंच, नारी के तन आए बचाऊं यही हवे मोला साच। तो फिर पूजा जी, क्या रानी के जो महावत थे उन्होंने बात उनकी मानी या फिर उन्होंने कोई और तरीका निकाला?
1: रानी दुर्गावती भयानक दर्द से कराह रही थी।
0: जी।
1: उन्हें अनेक तीर लगे थे, वह लहू लुहान थी। शत्रु सेना इससे पहले कि कुछ समझ पाए उन्हें निर्णय लेना ही था। समय ही तो नहीं था, हर क्षण भारी था।
0: जी।
1: विपदा सामने खड़ी थी, शत्रु सेना आगे बढ़ रही थी, रानी लहू लुहान थी।
0: जी।
1: गणा राज्य की इज्जत दांव पर लगी थी, पल पल भारी था। बिना देर किए तभी रानी ने अपने ही कमर से बंधी कटार निकाली और अपने ही सीने में घोंप ली।
0: जी।
1: क्षण भर में रानी दुर्गावती के प्राण निकल गए। उस वीरांगना के बलिदान को देखकर जैसे सारी सृष्टि थम गई, तलवारों की गूंज रुक गई, सन्नाटा पसर गया। उस वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने राज्य के लिए सहर्ष ही अपने प्राण न्योछावर कर दिए।
0: और तभी तो देखिए आज इतने सालों बाद, इतनी सदियों बाद, हम आज भी उनका नाम कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से लेते हैं। शौर्य की उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। रानी दुर्गा जो कहा है, आज भी वो रानी दुर्गा के समान जिन्हें गढ़ा के लोग मानते थे, आज वो पूरी दुनिया में वीरांगना रानी दुर्गावती कहलाती हैं। पूजा जी, सुना है कि इस दृश्य को पेंटिंग के रूप में भी उकेरा गया है, क्या ये बात सही है?
1: हाँ, जैसा कि हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि मुगल साहित्यकारों ने, लेखकों ने, चित्रकारों ने रानी दुर्गावती को हमेशा बहुत साहसी, निर्भीक और परिस्थितियों के आगे न झुकने वाला बताया है।
0: जी।
1: तो मुगल शासक अकबर के जो दरबारी लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने ही अकबरनामा नामक ग्रंथ भी लिखा है।
0: जी।
1: ये अकबरनामा 1590 से 1595 के बीच कभी लिखा गया और इसमें बहुत सारा वर्णन तो है ही, साथ में अंदर बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं। और वर्तमान में ये जो ओरिजिनल अकबरनामा है, ये लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है।
0: अच्छा।
1: और मुझे 2016 में ये देखने का मौका भी मिला।
0: जी।
1: तब मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि अकबरनामा में रानी दुर्गावती के बारे में क्या कहा गया है या उन्हें दर्शाया गया है। तो अकबरनामा में पूरे 2 पेज को मिलाकर एक पेंटिंग बनाई गई है और इसमें नरई के युद्ध का वह पल चित्रित किया गया है जिसमें रानी दुर्गावती को तीर लग चुके हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये पेंटिंग यदि हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं।
0: जी।
1: रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर बैठी हुई हैं।
0: जी।
1: सरमन को छींट वाले सफेद वस्त्रों से ढका गया है, जैसे हौद जो होती है।
0: जी।
1: ऐसे है, उस पर पालकी है, पालकी में रानी दुर्गावती बैठी हैं।
0: जी।
1: उन्होंने हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और अंगरखा जैसा है।
0: जी।
1: जिसे उन्होंने कमर पर बांधा हुआ है और उनके कमर में कटार है। उन्होंने सिर पर शिरस्त्राण भी पहना हुआ है, उनके हाथ में तलवार है, उनके आसपास धनुष बाण है। इस दृश्य में यह भी दिखाई देता है कि रानी दुर्गावती की गर्दन में एक तीर लगा हुआ है और दूसरा तीर उनके सीने में धसा हुआ है
0: जी।
1: उनका चेहरा कुछ पीछे की तरफ लटका हुआ है और सामने हमको दिख रहा है कि जो उनका हाथी है सरमन
0: जी।
1: उसका जो महावत है आधार सिंह बखिला, जिसने उनसे यह निवेदन किया था कि हम युद्ध क्षेत्र से आपको सुरक्षित बाहर ले जा सकते हैं इस अवस्था में, वो आधार सिंह तलवार लेकर हाथी के ऊपर बैठा हुआ भी रानी को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है
0: जी।
1: इसके साथ ही आसपास के दृश्य में दिखाया गया है कि रानी दुर्गावती के सभी सेनापति ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है और वो मुगल सेना को उनके निकट आने से रोक रहे हैं
0: जी।
1: वहीं दूसरी तरफ मुगल सेना अपने तीर भाले लेकर पूरी तरीके से एकमात्र रानी के ऊपर निशाना साधे हुए है। इस पेंटिंग में एक और देखने वाली बात है, वो ये है कि एक सैनिक तो दो नाली बंदूक लिए हुए भी है।
0: मुगल सेना के सैनिक?
1: जी हाँ, मुगल सेना का सैनिक एक बड़ी सी दो नाली बंदूक भी रानी की ओर ताने हुए है।
0: अच्छा।
1: तो तोपखाना भी उनके पास था, दो नाली बंदूकें भी थी और तीर बर्छे हाथी घोड़े ये सब तो थे ही। तो ये ठीक उस क्षण का दृश्य है जब रानी दुर्गावती को दोनों तीर लग चुके हैं और उन्होंने युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने को मना कर दिया है और उनके सभी लोग उनको बचाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।
0: इतिहास के पन्नों से की 9वीं कड़ी में आज हमने पूजा जी से जो बात करी, हम इतने दिनों से रानी दुर्गावती की दास्तान सुन रहे थे और आज के अंक को, आज के एपिसोड को सुनने के बाद हम ये जान पाए कि किस तरह जो आज शौर्य गाथा गाई जाती है वो किस तरह रानी दुर्गावती ने खुद अपने ही हाथों अपनी कटार से लिखी थी, अपने पराक्रम से लिखी थी। उन्होंने कतई हार नहीं मानी, ना अपने आप को दुश्मनों के सुपुर्द किया, ना ही वो रणक्षेत्र छोड़कर भागी। वो एक लगभग निश्चित पराजय जब उनकी होने वाली थी तब भी उन्होंने किसी भी तरह से हार नहीं मानी, आखिर समय तक वो लड़ती रही और अंत तक उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। निश्चित रूप से ये गढ़ा के गोंड राज्य की विजय गाथा है, एक महान वीरांगना की विजय गाथा है। तो श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे इतिहास के पन्नों से, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों को समेट कर हमारे लिए जो जानकारियां लाई हैं वो हैं मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। फिर एक बार पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अनुपम जानकारियां आप हमें दे रही हैं, इतनी अनूठी जानकारियां हमें आप दे रही हैं। गढ़ा के गोंड राज्य की दास्तान आगे भी जारी रहेगी लेकिन वक्त है अब आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। इसी वादे के साथ अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। डॉक्टर पूजा सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में थी पुरातत्वविद के रूप में, ध्वनि संयोजन और ध्वनि संपादन का कार्य संभाला अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिप्पुल्स का रहस्य, ग्रीक नाविक और पुरानी नई दुनिया। पश्चिमी दुनिया की इतिहास की किताबों में हिप्पुल्स का नाम अक्सर कोलंबस या मैगेलन जैसी ही श्रद्धा के साथ दर्ज किया जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के इस ग्रीक नाविक को एक ऐसी खोज का श्रेय दिया जाता है जिसने दुनिया बदल दी, मानसून की हवाओं का रहस्य। लेकिन यदि आप 2000 साल पीछे जा सकें और भारत या अरब के किसी बंदरगाह पर किसी नाविक के कान में उसका नाम फुसफुसाएं, तो वे शायद हंस पड़ेंगे, क्योंकि हिंद महासागर के लोगों के लिए हिप्पुल्स का यह रहस्य पिछली शताब्दियों से एक सामान्य जानकारी थी। लंबे समय तक भूमध्य सागरीय नाविक केवल तट के किनारे चलने वाले थे। वे गहरे खुले समुद्र से डरे हुए थे और हर समय तट रेखा को अपनी आंखों के सामने रखना पसंद करते थे, जिसे वे अरब प्रायद्वीप के किनारों पर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते थे। यह यात्रा लंबी, खतरनाक और समुद्री लुटेरों से भरी थी जो खाड़ियों में छिपे रहते थे। लेकिन फिर हिप्पुल्स आया। लगभग 100 ईसा पूर्व में उसने समुद्र की सांस के बारे में कुछ असाधारण महसूस किया। उसने देखा कि दुनिया के इस हिस्से में हवाएं बेतरतीब ढंग से नहीं चलतीं। वे एक पूर्वानु में मौसमी मशीन की तरह थीं। नवंबर से जनवरी तक उत्तर पूर्वी मानसून महाद्वीपीय एशिया से पूर्वी अफ्रीका की ओर शुष्क हवाएं चलाता है। अप्रैल से अगस्त तक यह प्रक्रिया उलट जाती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून तेज हवाओं को वापस उत्तर की ओर धकेलता है। हिप्पुल्स की इस खोज ने ग्रीको रोमन जहाजों को तट से चिपके रहने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ अपने प्रस्थान का समय निर्धारित करके वे अपने जहाजों को लाल सागर से सीधे भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों जैसे मुजिरिस या बैरीगाजा तक पहुंचा सकते थे। इसने बैरेनिका बंदरगाह को एक फलते फूलते मरुस्थलीय एम्पोरियम में बदल दिया, जहां भारतीय काली मिर्च और रेशम के बदले रोमन सिक्कों का व्यापार होता था। इस समुद्री क्रांति को पहली शताब्दी ईस्वी के एक प्रसिद्ध दस्तावेज में दर्ज किया गया है, जिसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहा जाता है। एक अज्ञात यूनानी द्वारा लिखित ये दस्तावेज इस नए मार्ग के लिए एक व्यावहारिक नियमावली के रूप में कार्य करता है, जिसमें बंदरगाहों, सामानों और हवाओं के महत्वपूर्ण समय का विवरण दिया गया है। हिप्पुल्स का असली रहस्य परिप्रेक्ष्य का एक सबक है, जहां यूनानी इतिहासकारों ने उन्हें एक अग्रणी के रूप में सराहा, वहीं स्रोत बताते हैं कि हिंद महासागर के नाविकों ने यूनानियों के आने से कम 800 साल पहले ही इन मौसमी पैटर्नों में महारत हासिल कर ली थी। स्थानीय लोगों के लिए मानसून कोई खोज नहीं थी, वे ईश्वर की सांस थे जो जीवन, खेती और व्यापार की लय तय करते थे। हिप्पुल्स ने मानसून की खोज नहीं की, उसने बस उन लोगों की बात को अंततः सुना और समझा जो सहस्त्राब्दियों से उनका उपयोग कर रहे थे। उनकी कहानी उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जब भूमध्य सागरीय दुनिया को आखिरकार एक विशाल, प्राचीन और अत्यधिक परिष्कृत एफ्रो एशियाई नेटवर्क को स्वीकार करने और उसमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो रोम के एक शहर बनने से बहुत पहले से फल फूल रहा था।
2: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। टेक गुरु के संग में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने एआई विषय पर पहले बात की थी, बात आज भी करेंगे एआई पर, लेकिन आज जानेंगे एआई से क्या कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट कंप्यूटर ही है, या कंप्यूटर के बाद ये रिप्लेसमेंट मानव को भी करेगा, और ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस विषय की जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर अनुग्रह नगाइज। आप मैनिट यानी MNIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
4: अगर अपन फायदे की बात करें तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मसलन धीरे धीरे अभी लोगों तक पहुंचेगी, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि कंप्यूटर आया था तो एक डर था कि कंप्यूटर आया तो अब तो ये तो सारे काम कर लेता है, टाइपराइटर हटा, तो मशीनरी चेंज हुई, ये बात तो समझ में आती है, मतलब मशीन का रिप्लेसमेंट मशीन हुआ, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक तो मशीन से मानव का रिप्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कितना होगा, इस पर आपने कहा भी था कि आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ भूलना पड़ेगा, ये निरंतर चलते रहने वाला क्रिया है, ये कहें तो उसी का हिस्सा कहीं ना कहीं AI है।
5: जी,
4: AI से अभी जो लोग हैं वो AI को केवल सुना सुना है, एक ChatGPT तक कुछ लोगों की पहुंच पहुंची है। जैसे एप्लीकेशन की बात करें, हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी पहली एप्लीकेशन किसी क्लास में सीखता है, फोर्थ क्लास हो सकती है, फिफ्थ क्लास हो सकती है, पांचवीं, छठी, सातवीं, कोई भी हो सकती है। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई है, अब वो ChatGPT में अगर तुरंत कोई एप्लीकेशन डालता तो उस एप्लीकेशन तुरंत मिल जाएगी, अदरवाइज उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए उसे क्लास में सिखाई जाती थी, वो उसको सीखता तो शायद संभव था। कई तो ऐसे भी होते थे कि उसमें वो इसी एप्लीकेशन में छोटे मोटे सुधार करके शायद 10वीं या 12वीं के आगे तक वो एप्लीकेशन चलती रहती थी। अब AI के पास ये जानकारी इस तरह की, वो 5वीं तक के बच्चे को अलग तरह की एप्लीकेशन समझाएगा और 10वीं या कॉलेज के लेवल को, क्या ये सही बात है?
5: देखिए, AI एक ऐसा मान लीजिए कि वो एक सर्व सुविधा युक्त जिन है, पॉपुलर कल्चर के एक उदाहरण में दे रहा हूँ। अब उससे आप वरदान में कंघा भी मांग सकते हैं और बाल भी मांग सकते हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा वो जवाब देगा। इंटरनेट के बारे में भी यही कहा जा सकता है, आप एंटरटेन भी हो सकते हैं और उसकी मदद से कुछ सीख सकते हैं। तो AI भी ऐसे ही है, अगर सही तरीके से प्रॉम्प्ट किया जाए तो यकीनन वो मतलब बहुत अच्छा टीचर बनाया जा सकता है, बशर्ते उसके ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब कौन से डेटा से ट्रेन किया हो इस बारे में हमको ट्रांसपेरेंसी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ इसका ट्रेनिंग डेटा सेट कहीं बायस नहीं है। तो AI के हर आउटपुट पे और ट्रेनिंग डेटा सेट पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हो रहा है तो AI की मदद से फर्स्ट क्लास का लड़का, उसके लिए उसके हिसाब से, उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से एक अलग कोर्स तैयार किया जा सकता है सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट के द्वारा, और 5वीं कक्षा के लिए अलग किया जा सकता है, 10वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग। मैंने बताया ना, ये हर किसी को उपयोग करके देखना चाहिए ChatGPT की। इमेजिन यू आर अ टीचर, एक्सप्लेन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ले लीजिए, कोई भी जियोपॉलिटिकल विषय ले लीजिए, एनी टॉपिक टू मी लाइक आई एम अ क्लास 5th स्टूडेंट, और वो बड़े अच्छे से क्लास 5th के स्टूडेंट के लेवल के आधार पे थी। अब उसके डेटाबेस में, ट्रेनिंग डेटाबेस में क्लास 5th के बच्चे का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है कि वो क्लास 5th के बच्चे को कैसे परसीव करेगा, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है।
4: आपने चैट जीपीटी का नाम लिया, एक सामान्य आदमी के लिए अपन बात करते हैं जो लोग इससे रूबरू हो गए हैं मान लेते हैं और जो नहीं हुए, एक चैट जीपीटी एक ऐप है, इसको डाउनलोड करना है और फिर वो संभवतः टेक्स्ट को लेकर, ऑडियो को लेकर या वीडियो को लेकर अलग अलग जानकारी दे पा रहे हैं ये मान लेते हैं अपन। इसके अतिरिक्त कोई और ऐप या कौन से
5: टूल्स? बहुत सारी हैं। देखिए चैट जीपीटी तो सबसे ज्यादा फेमस हो गई, वो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो कहते हैं अपन 2022 के एंड में आया और बस वो पूरी दुनिया में छा गया। फिर ये इस साल की शुरुआत में वो गिबली आर्ट इमेजेस से कार्टून बनाना, जितने लोग उस टाइम नहीं सीख पाए थे वो उन्होंने गिबली आर्ट के टाइम पे सीख लिया। लेकिन ऐसे कई टूल्स हैं, मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ और मेरी कोशिश रहती है साल भर में 50 किताब पढ़ पाऊं, लेकिन वो करना 50 किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। गूगल आपका जीमेल अकाउंट है या अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल का भी चैट जीपीटी के समतुल्य इक्विवेलेंट एक अपना मॉडल है जिसको बोलते हैं जेमिनाई। तो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो आप जेमिनाई भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी से काम कर सकते हैं। जेमिनाई में एक नैनो बनाना करके उसका एक इमेज जनरेशन मॉडल है, वो मतलब फ्लॉलेस है, जबरदस्त है। तो इमेज जनरेशन के लिए मैं जेमिनाई का नैनो बनाना यूज करता हूँ। जेमिनाई कोर मॉडल और चैट जीपीटी दोनों मोर और लेस वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिससे टेक्स्ट जनरेट किया जा सकता है। गूगल का एक बहुत उपयोगी फीचर जो है नोटबुक LM, देखिए मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि इसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है ये अपन को नहीं पता। नोटबुक LM बेसिकली एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो केवल उसी आधार पर जानकारी देता है जो आप उसे बताते हो। उदाहरण के लिए आपने एक पुस्तक की या एक रिपोर्ट की या एक कोर्ट के केस की समरी डाल दी, अब कोर्ट के जजमेंट जो रहते हैं वो आप और मैं शायद उतने आसानी से नहीं समझ पाए, तो आपने PDF 2-3 निकाली और वो PDF किसी भी तकनीकी विषय रिसर्च पेपर हो सकती है, कोर्ट के जजमेंट की हो सकती है या एक सामान्य किताब का, मैंने शुरुआत किया था किताब का हो सकता है, और वो नोटबुक LM पे आप अपलोड करते हो, है ना। और या फिर आप एक 2.5 घंटे का पॉडकास्ट है यूट्यूब पे उसकी लिंक आपने अपलोड कर दी, नोटबुक LM सिर्फ केवल जो PDF आपने डाली है, जो लिंक आपने शेयर किया है, केवल उसी आधार पे उस कंटेंट की समरी जनरेट करता है। तो नोटबुक LM की मदद से जो साल की 50 किताबें मैं पढ़ पा रहा था, अब वो मैंने 250 तक खींच ली है। हर किताब डीप पे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक किताब के PDF अपलोड की, उससे पूछा क्या रिलेवेंट पार्ट है, अगर कुछ ऐसा लगता है तो वो किताब के डीप में जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत आसानी, बहुत सुविधा हो जाती है। आप कभी कोशिश करके देखिएगा, आपके यहाँ कोई बीमार है तो उसकी जो मेडिकल केस हिस्ट्री की रिपोर्ट होगी उसकी PDF बना के आप नोटबुक LM में अपलोड कीजिए, उस डेटाबेस के आधार पे आप उससे प्रश्न पूछ लीजिए, जितना सरल हो जितना कॉम्प्लिकेटेड हो वो केवल अपलोडेड डेटा के हिसाब से जानकारी देगा। इसमें क्या रहता है कि वो जो बायसनेस वाला, गलत जानकारी वाले जो चीजें रहती है वो कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट आप ही प्रोवाइड कर रहे हो। तो नोटबुक LM इस मामले से बहुत बहुत बढ़िया टूल है। इसके अलावा जैसे जेमिनाई और चैट GPT ये कई बार गलत जानकारी भी देते हैं
4: जी,
5: तो उन गलत जानकारियां जिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में सबसे कम ऐसे मानी जाती हैं वो है एंथ्रोपिक का परप्लेक्सिटी।
4: अच्छा,
5: तो परप्लेक्सिटी में किसी विषय के बारे में आपको सर्च करना है तो आमतौर पे तो ये बिल्कुल सही देंगे, परप्लेक्सिटी हो गया या चैट GPT हो गया या जेमिनाई हो गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परप्लेक्सिटी के रिजल्ट ज्यादा रेफरेंस रहते हैं। तो जब अपन किसी विषय की गहराई में जाएंगे तो वो जो रेफरेंसेस हैं वो काम आ जाते हैं, मतलब हो सकता है चैट GPT और जेमिनाई काफी एक स्टेज के बाद हेलुसिनेट करने लगे, डीप में जाते जाते उनको जानकारी नहीं और वो कॉन्फिडेंटली झूठ, हो सकता है, संभावना है कि वो दे रहे, लेकिन चूंकि ये रिलेवेंट रहता है तो एंथ्रोपिक का टेक्निकल शोध के विषय में काफी अच्छा माना जाता है परप्लेक्सिटी। इसके अलावा अगर क्रिएटिव राइटिंग है तो क्लॉड करके एक अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, अगर क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग इसकी बात करें तो उसके लिए वो सबसे अच्छा है। अगर आप ट्विटर में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नैरेटिव कैसे बन रहे हैं, तो ग्रोक करके एक मॉडल है अपना एक्स का है, एक्स के मतलब पुराना नाम जिसका ट्विटर था, एलन मस्क की कंपनी, उसके डेटा पे रिजल्ट देता है। तो ये सारे ट्रेनिंग डेटा से चूंकि पास्ट के किसी डेट पे है तो हो सकता है तत्कालिक कंटेम्प्रेरी जानकारी उतनी अच्छे से ना दे पाए, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड जानकारी चाहिए तो ग्रोक इज अ गुड AI मॉडल।
4: जितनी बात अभी आपने और हमने करी उससे एक बात जो समझ में आ रही है मोटी मोटी, वो ये कि जब भी आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका प्रश्न क्या है उस
5: जी,
4: है ना, जैसा आपका प्रश्न होगा उसी तरह का उत्तर वहां से आएगा। दूसरा, जो जानकारी वो दे रहा है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में कोई बीमार है और आप उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन या वो जो पर्चा होता है डॉक्टर ने या कोई रिपोर्ट आप उस पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से भी जो आप प्रश्न पूछेंगे वो आपको उत्तर दे देगा। मैं ठीक कह रहा
5: हूं? जी, इसमें केवियट है, मैंने कहा ना चैट जीपीटी से आप बीमारी का इलाज नहीं पूछ रहे
4: जी,
5: उसमें संभावना है कि हो सकता है गलत दे, लेकिन जो नोटबुक एलएम है जो एक टूल मैंने बताया था वहां पे आप जो पीडीएफ अपलोड करोगे वो उन पीडीएफ से ही अपना जवाब देगा, वो इंटरनेट में नहीं जाएगा सर्च करने, या वो अपने डेटाबेस से खुद का ज्ञान नहीं प्रस्तुत करेगा, वो उसी पीडीएफ के आधार पर जवाब देगा जो आपने अपलोड किया, तो इस आधार पर वो बता सकता है।
4: कहने का मतलब एक ही कम्युनिकेशन है जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, एक जो व्यक्ति इधर बैठा है जो प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा एआई टूल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा और फिर एआई ने जो उसका जवाब दिया, दोनों सूरत में महत्वता ये आ रही है कि प्रश्न आपका उतना सटीक हो जैसा आपका प्रश्न वैसा उत्तर वाली बात होगी
5: जी।
4: और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात यह कि वो आपको जो भी उत्तर देता है
5: जी।
4: आपको अपने विवेक के साथ उसको क्रॉस चेक भी करना है, जो का तो मतलब जैसे कि आपने कहा कि वो कोई आपको इलाज तो बता नहीं रहा बीमारी का, वो आपको आपकी रिपोर्ट का एनालाइज करके दे रहा है
5: जी।
4: क्या ठीक कह रहा हूं?
5: हाँ, नोटबुक एलएम से जो हम लोड कर रहे हैं वो हमारी रिपोर्ट को एनालाइज करके हमको दे रहा है, चैट जीपीटी से जो पूछ रहे हैं वो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट पे बेसिस पे जवाब दे रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग क्षमता है, तो जहां पे इंटरनेट से या उसके ट्रेनिंग डेटा सेट हुए वहां पे हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग डेटा सेट क्या था, कैसा था, उसमें बायस तो नहीं थे या उसके आउटपुट को चेक करना पड़ता है कि ये कितने सही दे रहा है कितने गलत दे रहा है, इससे कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। आपने केसेस सुने होंगे कि वहां पे लोग जो है उनको सुसाइड के लिए इनकरेज कर लिया, या किसी ने ऐसे लार्ज लैंग्वेज, चूंकि उनका ट्रेनिंग डेटा सेट तो वास्ट है, अब कोई इनसे उदाहरण के लिए ये भी पूछ सकता है कि बम कैसे बनाना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ऐसे फिल्टर लगाने पड़ते हैं
4: सोशल, मतलब हर चीज का उपयोग गलत भी हो रहा है।
5: लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली कंपनियां ये बार बार ऐसे फिल्टर लगाती है ताकि उन मॉडल्स का गलत उपयोग ना हो सके। हाँ। लेकिन इस चीज पे हमें भी एज ए यूजर और हमें भी एज ए गवर्नमेंट भी चेक करना पड़ेगा कि इनका ट्रेनिंग डेटा सेट और इनका अप्लाइड यूजर केसेस सिनेरियो ये सही दृष्टि से हो। लेकिन जहां पे ट्रेनिंग डेटा सेट सीमित है मतलब जैसे नोटबुक एलएम किया, या आपने बोला कि भाई मेरे को लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए लेकिन मैं अपना डेटा किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो ऐसे ओपन सोर्स मॉडल है, फेसबुक का लामा एक ओपन सोर्स मॉडल है, आप डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए और इंटरनेट बंद करके लैपटॉप के ही लोकल डेटा पे आपने ट्रेन किया है।
4: हाँ।
5: तो उसमें डेटा बाहर का डेटा का सवाल ही नहीं उठता, जो आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देंगे वो उस पर अपना जवाब देगा। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास एक अलग मॉडल है। होता यह है कि जैसे मैंने बोला, मैं बार बार क्लेरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमें केस नहीं पता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, तो हो सकता है कोई अपने मेडिकल रिपोर्ट चैट जीपीटी पे जाके अपलोड करे और अपने मेडिकल हिस्ट्री के आधार पे उपाय मांगे, वो गलत हो जाएगा। वो एक एग्जांपल था, वो सिर्फ नोटबुक एलएम के केस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आना जरूरी है।
4: मतलब अपन ने ये बात कही थी कि एक तो प्रश्न आपका क्या है, दूसरा फिर उत्तर वो आपको क्या दे रहा है, दोनों बातों में जो इंसान इस पे काम कर रहा है उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है,
5: विवेक का इस्तेमाल करना है। और एआई के बारे में जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है,
4: हाँ।
5: जो मेरा उद्देश्य रहता है, जो मैं अलग अलग जगह था, वो यही बताता हूँ कि भाई ये टूल बहुत जबरदस्त है, इससे आप जो प्रश्न पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। लेकिन हर टूल की एक सीमाएं रहती है, वो सीमाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो लिमिटेशंस, वो चैलेंज, वो वर्स्ट केस सिनेरियो, सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम जिस उद्देश्य से यूज करना चाह रहे हैं ठीक उसी उद्देश्य से उसका उपयोग कर पाए, अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
4: एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अभी सबसे बड़ा वो कौन सा सेक्टर है जहां आईटी का यूज हो रहा है और अगले 5 या 10 साल में उसमें ज्यादा होने वाला है, क्या है?
5: ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब एआई के बारे में रिसर्च चालू हुई थी तो आपको पता है एआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ऑब्सोलीट करना है। मतलब बिफोर द टेक्नोलॉजी बिकेम मेनस्ट्रीम 2022 के पहले,
4: से मतलब क्या है ऑब्सोलीट? हाँ, करना है।
5: मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हर किसी ने जब स्कूल में कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो बड़ा सिंपल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जब एक्सप्लेन करते हैं स्कूल में तो ये रहता है कि एक सीपीयू रहता है डब्बा, कुछ इनपुट डिवाइसेस रहते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। इनपुट डिवाइस से एरो जाता था सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वहां से वो एरो जाता था आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस हो गए, आउटपुट में स्क्रीन और स्पीकर हो गए। तो ये बेसिक डायग्राम ऑलमोस्ट हर किसी ने जिसने आईटी या कंप्यूटर साइंस स्कूल में पढ़ा है सबको पता होगा। अब सीपीयू इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करता था, इसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती थी। आपको ध्यान होगा आज से 10, 20, 30 साल पहले इंडिया में जब कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन आया, हम लोग जब सॉफ्ट पावर बने, बीपीओ रिवॉल्यूशन आया, वो सब भारतीय प्रोग्रामर्स के दम पे हुआ। तो सीपीयू को इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए कंप्यूटर को सीपीयू को प्रोग्राम किया जाता था अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आप ये मानिए सीपीयू में इनपुट प्लस प्रोग्राम यूज टू बी द आउटपुट, मतलब आपने इनपुट तो किया ही लेकिन उस इनपुट का करना क्या है ये भी कंप्यूटर को समझाया, तब जाके वो कंप्यूटर अपने लिए काम करने योग्य बन पाता था। मशीन लर्निंग क्या कर रहा है या एआई क्या कर रहा है, ये जो प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर था ये इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को मैनुअली प्रोग्राम करने की बजाय क्या ऐसा संभव है कि हम उसे बहुत सारा डेटा दे दें? जैसे मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण लिया, एक लाइब्रेरी भर के डेटा दे दें कि भाई ये आपकी लाइब्रेरी है, आप इसको समय लेके पढ़ो। पहले सुपरवाइज लर्निंग आया, वहाँ पे हमारा ह्यूमन सुपरविजन रहता था कैसे कैसे ट्रेन करना है, फिर अनसुपरवाइज लर्निंग आया, डीप लर्निंग आया, न्यूरल नेटवर्क आया, कुल मिला के हमने कंप्यूटर को दे दिया डेटा। ये डेटा है, अब यू टेक योर ओन टाइम। ये जो एनवीडिया के जीपीयू है, हाई हमने आपको बिजली दे दी, हमने आपको जीपीयू दे दिए, अब कंप्यूटर को बोल दिया भैया आप इस पूरे डेटा से खुद ही इन्फ्रेंसिस करके यू स्टार्ट टू ट्रेन योर ओन वर्ल्ड। बीच बीच में हम ह्यूमन इंटरवेंशन, हम लोग आउटपुट देखते जाएंगे, प्रोग्रेस देखते जाएंगे और उस बेसिस पे इवेल्युएट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो उसका ट्रेनिंग डेटा सेट है वो हम लोग ने कंप्यूटर को दे दिया और प्रोग्रामिंग पार्ट से हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तो अब क्या परिस्थिति बन गई है? रॉ डेटा सेट। और यही रीजन है कि डेटा हैज बिकेम द न्यू ऑयल, ऐसा क्यों कहते हैं? जो पिछले 100 सालों में युद्ध पेट्रोल के लिए हुए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए हुए, वो अब डेटा के लिए हो रहे हैं। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनेगा, और कंप्यूटर इंटेलिजेंट बनेगा उसके यूज के सिनेरियो, जितना इंटेलिजेंट बनेगा उतना आप उपयोग कर पाएंगे। तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग करने का जो प्रक्रिया था वो धीरे धीरे अब हट रही है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का ही है। आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि गूगल के हेड ने, सुंदर पिचाई ने कह चुका है, अमेजन के हेड ने कह चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड ने कह चुका है कि एटलीस्ट 50% जो कोडिंग थी वो अब एआई की मदद से ये सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर 50% कोडिंग का काम, और कोडिंग क्या होती है? ताकि कंप्यूटर को यूजेबल बनाया जा सके। जो इंडस्ट्री है, जो इफेक्ट होने वाली है वो यही है कि प्रोग्रामर्स का डोमेन था वो अब सीमित होता जाएगा। प्लस हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करते थे लेकिन कंप्यूटर्स में जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उन्हीं को यूज करते थे। हम लोग यूज कर रहे थे लेकिन हमारे पास ये आप मान लीजिए कोई ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये फीचर मेरे काम का नहीं है, थोड़ा और बेहतर हो सकता है, आपके पास ये सुविधा नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल बैरियर था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और जो कमर्शियल प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर थे उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे उसकी कोडिंग, क्योंकि अपन को पता नहीं था। लेकिन कोडिंग हट जाने से हम लोग भी, अब जैसे आपको अपना वेब पेज बनाना है, आप चैट जीपीटी पे जाके बोलिए मेरे को अपना, ये मेरा रिज्यूमे है पीडीएफ में, मैंने अटैच कर दिया, आप एक वेब पेज की स्क्रिप्ट बना के दे दो, चैट जीपीटी आपको 10 सेकंड में एक बढ़िया वेब पेज की स्क्रिप्ट दे देगा। आप इंग्लिश में बोलते जा रहे हो कि भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, और वो आपकी इंग्लिश को समझ के उस वेब पेज की स्क्रिप्ट में चेंज कर रहा है। तो एक तरह से तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का काम ऑटोमेट हो रहा है, दूसरी तरह आपके पास ये सुविधा हो गई कि आपको अब प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर्स को अपने हिसाब से यूज करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबसे पावरफुल है। जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे 1970 के दशक में, तब कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए रहता था। मेरे ख्याल से 1995 में जब विंडोज 95 आया, तब जाके वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दौर आया, जब अपन माउस या कीबोर्ड से क्लिक कर सकते थे। उससे पहले आपको याद होगा एमएस डॉस रहता था, टाइप करके अपन प्रॉम्प्ट करके खोलते थे, तो उसमें भी टेक्निकल बैरियर था। 95 के बाद सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गए, 2010 के बाद आईफोन के बाद सारे टच स्क्रीन फोन आ गए। आज एक बच्चा भी 2.5 साल का है, उसको भी यूट्यूब खोल के अपना वो लाल टमाटर वाला गाना खोलना आता है, इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस हो गया। तो एंट्री बैरियर है वो चेंज होता गया। एआई जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एंट्री बैरियर भी खत्म कर देगा। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड वेब पेज, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस ट्वीक कर पाएंगे। मुझे लगता है ये सबसे प्रोमिनेंट यूज है, और इसी यूज के कारण ही ये पूरी फील्ड आगे हुई थी। ये जो बाकी यूज हम देखते हैं, गिबली आर्ट, इमेज जनरेशन, ये तो साइड वाले टेकअवेज हैं। जो मेन यूज है, जो मोस्ट इम्पैक्टफुल डोमेन है, वो यही है।
4: आपने कहा कि जैसे कोडिंग वर्कर, तो क्या कोडिंग में जो जनरेशन काम कर रही है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आप खुद इंजीनियर हैं, पढ़ा भी रहे हैं अब तो एक बड़े हिंदुस्तान के इतने बड़े संस्थान में, तो क्या इंजीनियर्स का, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में?
5: बिल्कुल, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में है, क्योंकि मैंने बताया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज 50% ऑफ द कोड एआई से बना रही हैं। तो या तो आपको अपना स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो आपको अपने कोडिंग स्किल्स को एआई को ही बेहतर बनाने पे या एआई के नए नए फील्ड्स में उपयोग खोजने में लगाने पड़ेंगे, और या आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 50% कोड हो रहा था, अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो 50%, मैंने बोला ना रिपीटेड टास्क, ये बिल्कुल वही उदाहरण हो गया कि मैं अभी भी डिजिटाइज कर रहा हूँ, है ना, नक्शों को लैंड यूज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि एआई ये काम करके दे रहा है, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं कुछ लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो चाहेंगे कि नहीं कंप्यूटर से नहीं, मेरे से ही वो रोड का डिजिटाइजेशन करवाए। तो ये सोचना बड़े बेमानी होगा कि हम जो 50% ऑटोमेटेड कोड हो रहा है जनरेशन, उसी के दर पे रह सकते हैं। तो हाँ, उन इंजीनियर्स वो अपने स्किल्स को ज़्यादा बेहतर उपयोग में लगा सकते हैं अगर वो चाहे तो।
4: तो आईटी या सीएस में ब्रांच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं,
5: हाँ,
4: ये चुनौती उन्हीं के लिए है?
5: बिल्कुल है।
4: या बाकियों के लिए?
5: बाकियों के लिए भी है, बाकियों के लिए भी है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहने वाला। हाँ, कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं और आप हो गए, हम, चलिए मैंने तो मेरी एक करियर ऐसी ट्रेजेक्टरी में गया, ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे टेक्नोलॉजी सही समय पे इनके बारे में पता चलता गया और मेरे को एक पीयर ग्रुप मिला जिससे मैंने थोड़ा बहुत सीख भी लिया। लेकिन आईटी और कंप्यूटर, आईटी तो खैर ऑब्सोलीट हो गई, अब आईटी की उतनी ब्रांच नहीं, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को ये समझना चाहिए कि वही उन्हीं के फील्ड से ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं, तो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब उनको दूसरों के लिए तो एआई के उपयोग को सुगम बनाना ही है, और अगर वो ऐसा कर लेते दे विल मेक अ वेरी गुड करियर आउट ऑफ इट, लेकिन खुद को बचाने के लिए भी, ताकि वो लेवल से बाकी लोग से आगे रह सके, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेहतरी से लेवरेज कर सके, इस चीज को समझना आवश्यक हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन उनसे ज्यादा बेहतर अच्छे से तरीके से कोई नहीं समझ सकता है। हम लोग तो बाहर ही है, मैंने बताया ना मैं भी आर्किटेक्चर प्लानिंग से गया हूँ, वही लोग के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, तो वो अगर इस चीज को समझेंगे दे'ल बी अहेड ऑफ द कर्व।
4: हाल ही में देश की इतनी बड़ी संस्थान TCS ने तकरीबन 10 या 12 हजार
5: जी
4: काम करने वाले को हटाया है
5: जी,
4: क्या ये इसी का सर?
5: हो सकता है, देखिए ग्लोबल कंपनीज में बिजनेस रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता रहती है, जैसे अब TCS कहीं बाहर के प्रोजेक्ट ले रही है, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट ले रही है अगर उस कंपनी के पास खुद ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो 50% ऑफ द कोड खुद जनरेट कर सकते हैं, तो वो अपना मैन पावर या वो अपना बिजनेस कम करेंगे, इसके कारण ले ऑफ हो सकता है। पहले वाले टेक्नोलॉजिकल वेव्स में जो ले ऑफ हुए थे वो निचले स्तर के होते थे, AI के बाद निचला और ऊपर वाला कोई स्तर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि नहीं मेरा जॉब तो सेफ है, मैं तो सबसे ऊपर बैठा हूँ। देखिए जेसन हुआंग करके एनवीडिया के फाउंडर हैं, एनवीडिया मतलब जो GPU बनाती है, GPU बोले तो कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का दिमाग, बिना GPU के AI रेवोल्यूशन संभव नहीं हो सकता, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। उनका बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं AI आपको जॉब से रिप्लेस नहीं करेगा, समबडी यूजिंग AI वुड रिप्लेस यू फ्रॉम योर जॉब, मेरे से बेहतर मैं एक प्राध्यापक हूं, मेरे को रिप्लेस वो करेगा जो AI को बेहतर तरीके से यूज करेगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो आपको वो दूसरा व्यक्ति रिप्लेस कर सकता है जिसको 5 AI टूल्स के बारे में पता है, तो वो आपका काम बहुत कम समय में कर सकता है। तो AI रिप्लेस नहीं करने वाला कोई भी जॉब, और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री हर सेक्टर में ये जॉब रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन जो रिप्लेस कर रहा है वो कोई व्यक्ति ही होगा जो AI को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा है।
4: ठीक है, जब आपने कहा कि बेहतर तरीके से यूज कर पाए, तो एक बात और बताइए कि लोग AI को सीखे कहां से?
5: बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज में और AI के बारे में बताना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा होगा कि यार इलॉन मस्क बोलता है कि AI वुड बी द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग विच विल हैपन टू द ह्यूमैनिटी, तो उसका जो AI के प्रति दृष्टिकोण रहता है वो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, वो डरता भी है, वो बोलता है संभल के रहने की भी जरूरत है, और फायदे भी देखता है। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है वो AI के अच्छी चीजें बताते हैं, जैसे सुंदर पिचाई कहते हैं कि जिस प्रकार आग ने, चक्के ने और बिजली ने या इंटरनेट ने हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया, AI उससे 1000 गुना ज्यादा तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, तो सिर्फ एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस विषय के विशेषज्ञ लोगों में भी मतानुभेद है कि भाई कोई इसको नेगेटिव देख रहा है, कोई डर रहा है, कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छी चीज है, कोई बैलेंस व्यू देने की कोशिश कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका एडवांसमेंट, जिसका प्रोग्रेशन कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। एंटिसिपेट नहीं कर सकता मतलब 2022 में ChatGPT का पहला वर्जन आया 2.5, उसके एक साल बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया, उसके 6 महीने बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया। तो कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, चूंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव ही मशीन्स की वर्किंग को एफिशिएंट बनाना है, और मशीन्स एफिशिएंट होके कैसे विकसित होंगी इस पे चेक हम लोग बीच बीच में उसके आउटपुट को टेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे हाँ अगले 6 महीने में ये चेंज होगा। इससे पहले वाले जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आए उस टाइम पे लोगों का परसेप्शन एक रहता था कि हाँ ठीक है अगला जो चेंज आएगा, अगला पड़ाव आएगा, अगला ब्रेक थ्रू आएगा, उसमें लेट्स से 1 साल लगेगा या 1 महीना लगेगा। लेकिन यहाँ पे तकनीक इतने तेजी से इवॉल्व हो रही है, ब्रेक थ्रू कल भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, हो सकता है नहीं आए। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है टुवर्ड्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, फेसबुक में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आमने सामने बिठा दिया और बोला कि आप दोनों आपस में बात करके सीखो, मतलब जो ऑटोनोमस बॉट रहते हैं जिनसे बात करते हैं, चालू हुआ और उसका वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। दोनों ने बात करनी चालू की और मेरे ख्याल से थोड़ी देर बात की और फिर परिचय तो हो ही गया था कि बोला मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये अंग्रेजी तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है विच मे नॉट बी दैट एफिशिएंट, सो वाई आर वी वेस्टिंग आर टाइम, वाई नॉट हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने जो मोर एफिशिएंट मोड ऑफ टॉकिंग है उस पे शिफ्ट जाए। और फिर वो अपने बीप और फ्रीक्वेंसीज में बात करने लगे, तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। ये वीडियो है आप देखिएगा। तो आप देखिए मशीन्स ने हमारी भाषा में बात करना चालू की और कुछ समय के बाद उनको मशीन्स को लगने लगा कि भाई ये तो बड़ा इनएफिशिएंट मोड है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या बीप्स में बात कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। इस प्रकार के जो चीजें हैं ये इसकी ग्रोथ को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है, और इसलिए सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंटली एआई की ही मदद से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चेक रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं बच्चे लोग से बहुत बात करता हूं असाइनमेंट में, जैसे उनको रिपोर्ट दी जाती थी पहले, रिपोर्ट बनाना जब मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट बनाना वॉज एक्चुअली अ वेरी स्किलफुल एक्सरसाइज। हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, तब तो इंटरनेट भी उतना नहीं था, लाइब्रेरी में जाते थे, चार पुस्तक पढ़ते थे, फिर उसको लिखते थे, फिर उसको समराइज करते थे, फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद गूगल रिजल्ट और ये सब यूज करने से थोड़ा लाइब्रेरी जाने की जो पीड़ा थी वो कम हो गई। आज आपको चैट जीपीटी पे मैं तो कहता हूँ कि आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आपको जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसकी एक फोटो खींचिए और अपलोड कर दिए बिना कुछ कहे, वो इमेज से रीड करके आपको बढ़िया एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो मैं बच्चों का जब असाइनमेंट चेक करता हूँ तो अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई ये प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दिख रही है, अब व्यक्ति को मैं जानता हूँ उसके स्तर का काम नहीं है, तो उसको बुला के पूछता हूँ भाई कैसे, तो मुझे बताता है सर ये टूल आया है, ये प्रेजेंटेशन अपने आप बता देता है, ये रिपोर्ट है ये बहुत अच्छा बना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज। अगर मैं बोल दूं कि नहीं बच्चे लोग से मैं क्यों बात करूं, बच्चे लोग नेचुरली उनको कम समय में ज्यादा काम करना है तो वो इन टूल से अवेयर रहते हैं। तो

0: मानना था कि धार्मिक नियम स्थायी नहीं होते। उनका नजरिया आलोचनात्मक और आधुनिक था। उनका मानना था कि हमें बदलते समय के साथ अपना आचार व्यवहार और विचार बदलने चाहिए। जब 1911 में उनकी वरिष्ठता की उपेक्षा करके किसी अन्य को पदोन्नत किया गया तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद वो मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। इसी के साथ वो कानून के छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायता देने के लिए लॉ की प्राइवेट क्लासेस चलाते थे। 1913 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में विल्सन फिलोलॉजिकल लेक्चर दिया। वो 1915-17 के दौरान यूनिवर्सिटी स्प्रिंगर रिसर्च स्कॉलर नियुक्त किए गए। उन्हें 1917 से 1923 के दौरान गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किया गया।
1: श्रोताओं, डॉक्टर पांडुरंग काणे की प्रमुख रचनाएं साहित्य शास्त्र और धर्मशास्त्र का आधार 1906 में रचित अलंकार साहित्य का इतिहास था। मुंबई विश्वविद्यालय ने इसके लिए उन्हें मांडलिक स्वर्ण पदक प्रदान किया। 1926 में उन्होंने संस्कृत भाषा के एक आलोचनात्मक ग्रंथ व्यवहार मयूख की रचना की। इस पुस्तक का अंग्रेजी और मराठी में अनुवाद किया गया है। अलंकार साहित्य का इतिहास उनकी एक अन्य रचना साहित्य दर्पण का परिशिष्ट है। 1951 और 1961 में इसका पृथक संस्करण प्रकाशित किया गया। डॉक्टर काणे असाधारण विद्वान थे। वे मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी में समान रूप से बात करते थे। डॉक्टर काणे ने अपने गहन अध्ययन से हिंदू समाज के युक्तिपूर्ण पुनर्गठन की योजना तैयार की। उन्होंने धर्मशास्त्र संबंधी सभी विषयों, ज्योतिष, गणित और फलित, सांख्य, योग तंत्र, पुराण, मीमांसा का भी विवेचन किया है। उनकी ये रचना भारतीय संस्कृति के विपुल भंडार के द्वार खोल देती है। इसका पहला खंड 1930 में प्रकाशित हुआ और अंतिम और पांचवा खंड दो भागों में 1962 में प्रकाशित हुआ।
0: काणे जी को अपनी विद्वता के लिए महामहोपाध्याय उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये किसी संस्कृत विद्वान को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। वे मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार की और उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय विद्या भवन के सम्मानार्थ सदस्य थे। प्राच्य साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार ने उनको राज्यसभा का सदस्य नामजद किया था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान में केवल अधिकारों की चर्चा करके भारत में प्रचलित इस मान्यता की उपेक्षा की गई है कि हर व्यक्ति के कुछ अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा उपयोगी नहीं हो सकता। काणे जी के अति विस्तृत ज्ञान और उनकी रचना के आधिकारिक स्वरूप को देखते हुए शासन तंत्र की बहस में दोनों पक्ष अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए काणे जी के विचारों का सहारा लेते रहे हैं।
1: डॉक्टर पांडुरंग काणे की स्मृति में बम्बई की एशियाटिक सोसाइटी ने 1974 में डॉक्टर पीवी काणे इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की। इंस्टीट्यूट प्राच्य भाषा साहित्य के अध्ययन अनुसंधान को सुगम बनाने बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी के साथ हर तीसरे वर्ष वैदिक धर्मशास्त्र अलंकार साहित्य में उल्लेखनीय योगदान करने वाले छात्र को डॉक्टर पी वी काणे स्वर्ण पदक दिया जाता है। डॉक्टर काणे के सर लल्लू भाई शाह भाषण मुंबई विश्वविद्यालय ने 1950 में हिंदू कस्टम एंड मॉडर्न लॉ शीर्षक से प्रकाशित किए। काणे का व्यक्तित्व धार्मिक साहित्य में गहन और आलोचनात्मक अध्ययन से विकसित हुआ था। समाज सुधार के मामले में उनका दृष्टिकोण उदार था। उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की। डॉक्टर काणे का पूरा जीवन भारतीय धर्म ग्रंथ भाषा संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगा रहा। उनका पूरा जीवन भारतीय धर्म भाषा संस्कृति को सुदृढ़ करने में भी समर्पित रहा। डॉक्टर काणे आजीवन मुंबई की रॉयल एशिया हिंद सोसाइटी और ब्राह्मण सभा मुंबई से संबद्ध रहे। जीवन पर्यंत एक कर्मयोगी की भांति साहित्य की सेवा करने वाले इस महान साहित्यकार धर्मशास्त्री और शिक्षा शास्त्री का 18 अप्रैल 1972 को निधन हो गया। साहित्य एकेडमी ने सन 1956 में धर्मशास्त्र का इतिहास पर 5000 रुपए का साहित्य एकेडमी पुरस्कार संस्कृत में प्रदान कर आपको सम्मानित किया और 1963 में भारत सरकार ने आपको भारत रत्न उपाधि से अलंकृत किया।
0: श्रोताओं, काणे जी ने अनेक शोध पत्र और निबंध लिखे जिनमें उन्होंने हिंदू कानून, विवाह व्यवस्था, स्त्री अधिकार, सामाजिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और प्राचीन भारतीय शिक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से लिखा। पांडुरंग वामन काणे की लेखनी में भारत की आत्मा बसती थी। उन्होंने धर्मशास्त्र को केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे भारतीय जीवन और संस्कृति का जीवंत इतिहास बना दिया। पांडुरंग वामन काणे जी का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। कठिन परिश्रम से असंभव भी संभव हो सकता है। शोध और अध्ययन समाज को नई दिशा दे सकते हैं। उनकी विरासत आज भी भारत की सांस्कृतिक चेतना को प्रकाश देती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना को आलोकित करने वाले ज्ञान और साधना के प्रतीक भारत विभूति पांडुरंग वामन काणे को शत शत नमन।
1: डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे के व्यापक कार्यों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके शोध से ये सुनिश्चित होता है कि प्राचीन भारत की समृद्ध परंपराएं, रीति रिवाज और कानूनी प्रणालियां भूली ना जाएं, बल्कि भावी पीढ़ियों तक पहुंचाई जाएं।
0: तो श्रोताओं, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की पांडुरंग वामन काणे जी के बारे में। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश वाथम और मैं था आपके साथ आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा
1: और मैं थी मनीषा।
0: सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी, जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थी, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीर जी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकार

0: 18 मई की शाम मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसके निर्देशन किया गोपी देसाई ने।
1: पापा कहते हैं,

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आपने सुनी रेडियो रिपोर्ट और अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का। आइए सुनते हैं परिक्रमा।

जब अंतरिक्ष वैज्ञानिक, दुनिया के शीर्ष उद्योगपति, नौ देश के राजनयिक और पारंपरिक कलाकार एक साथ बैठेंगे तो क्या बात होगी? बात होगी जीवन के उस तत्व की जिसके बिना सब सूना है, यानी जल। जिलों की नगरी भोपाल का प्रसिद्ध भारत भवन 27 मई से 2 जून तक एक ऐसे ही अद्भुत महाकुंभ का गवाह बनने जा रहा है जिसका नाम है सदानीरा समागम। यह आयोजन पारंपरिक सरकारी बैठकों जैसा नहीं बल्कि भारतीय दर्शन के पंच महाभूतों पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल के इर्द गिर्द बुना गया एक ऐसा राष्ट्रीय विमर्श है जो पर्यावरण और संस्कृति को एक नए रूप में पेश करेगा। 27 मई की शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इस अनोखे समागम का शुभारंभ करेंगे जिसकी अध्यक्षता संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी करेंगे। जानिए कि क्यों खास है आयोजन। ग्लोबल विलेज का एहसास होगा। यहाँ पे नेपाल, फिजी से लेकर वेनेजुएला और मैक्सिको समेत 9 देशों के राजनयिक इसमें शामिल होकर इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप देंगे।

एकजुट थिएटर एंड वेलफेयर समिति द्वारा मायाराम सुरजन भवन में आयोजित थिएटर कार्यशाला के पांचवें और छठवें दिन प्रतिभागियों के लिए बॉडी कंट्रोल, बॉडी मैकेनिज्म और इमोशंस की अभिव्यक्ति पर आधारित विशिष्ट सत्र आयोजित किया गया। शाम 5 बजे शुरू हुए इस सत्र में थिएटर की बारीकियों को व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से समझाया गया। सत्र की शुरुआत शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम को सरल तरीके से समझाने से हुई। विभिन्न एक्सरसाइज के जरिए प्रतिभागियों को बताया गया कि अभिनय के दौरान शरीर का संतुलन, श्वास नियंत्रण और मांसपेशियों की सक्रियता कितनी महत्वपूर्ण होती है।

अखिल भारतीय संस्था कला मंदिर द्वारा विश्व संवाद केंद्र में आयोजित ग्रीष्मकालीन साहित्यिक श्रृंखला के अंतर्गत माँ तुझे प्रणाम विषय पर काव्य गोष्ठी का आयोजन होगा। माता दिवस के उपलक्ष्य में हुए इस कार्यक्रम में माँ के ममत्व, त्याग, संस्कार और भारतीय संस्कृति पर आधारित कविताओं, गीतों और गजलों ने पूरे सभागार को भावनाओं से भर दिया। शहर के संगीत प्रेमी फिजा मंगलवार की शाम सुरों से सराबोर हो उठी जब AM&T अकादमी ऑफ म्यूजिकल एंड टेक्नोलॉजी ने रंगारंग कराओके नाइट का आयोजन किया। कार्यक्रम में 22 प्रतिभागियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि दर्शक देर तक तालियां बजाते रहे। पूजन अकादमी की निदेशक इसके बाद शुरू हुआ गीत संगीत का सिलसिला, जिसमें पुराने और नए फिल्मी गीतों की मधुर प्रस्तुतियों ने माहौल को संगीतमय बना दिया।

मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी में मंगलवार को डॉक्टर दंतु मुरली कृष्ण की पुस्तक युवा गीत का गीता का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे अकादमी निदेशक। इस अवसर पर पुस्तक को युवाओं के लिए जीवन प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित एक उपयोगी कृति बताया गया।

शहर के युवाओं और बच्चों की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से एवी स्टेप अप स्टूडियो द्वारा प्रयास हुनर की पहचान सीजन 3 का आयोजन बुधवार को किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6 बजे से रविंद्र भवन में होगा। आयोजन में डांस, फिटनेस और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिलेगी। वहीं विमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट सोसाइटी की ओर से गुरुवार को रविंद्र भवन में सामाजिक नाटक खाला कमाल की मंचन किया जाएगा। इस नाटक की प्रस्तुति अदाकार ग्रुप द्वारा की जा रही। ये नाट्य प्रस्तुति भोपाल के त्रासदी से प्रभावित परिवारों की उन महिलाओं को समर्पित है जो जरी जरदोजी कला की माध्यम से आजीविका चला रही हैं। विहान ड्रामा वर्क्स की बच्चों की थिएटर पहल स्वप्न नयन के अंतर्गत तैयार नाटक मिजाओगी खोंगचट का मंचन बुधवार शाम 7 बजे मानव संग्रहालय में किया जाएगा। नाटक मणिपुर की लोक कथाओं, प्राकृतिक परिवेश और जीवंत परंपराओं से प्रेरित एक रंगमंचीय प्रस्तुति है। नाटक का निर्देशन केतवार ने किया है। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य कुंजन।

0: पिछले काव्यांश में आपने सुना था राहुल जननी की मनहा स्थिति। लीजिए अब सुनिए इसके आगे।
1: अगले काव्यांश में यशोधरा

0: भारतीय चांदी से बना लंदन बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।
1: न जी भर के देखा न कुछ

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बिहार का शूरा और साम्राज्य की तोपें। एक ईस्ट इंडिया मैन जहाज के गोदाम में भारतीय रेशम की चमकदार परतों के नीचे एक और भी अधिक विस्फोटक माल छिपा होता था, साल्टपीटर शूरा। जैसे जैसे 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के युद्ध के मैदान लहूलुहान होते गए, युद्ध की प्रगति के लिए बारूद की मांग महाद्वीप की अपनी रासायनिक आपूर्ति से कहीं आगे निकल गई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे हल करने के लिए एक शानदार लॉजिस्टिक तरकीब खोज निकाली। जहाज के निचले हिस्से को स्थिर करने के लिए बेकार लोहे के पत्थरों या बजरी को भरने के बजाय उन्होंने साल्टपीटर का उपयोग युद्ध के भार के रूप में किया। इसकी आदर्श आपूर्ति पटना के पास बिहार के मैदानों से होती थी, जहां हर भारत में कहीं भी मिलने वाली शोरे की तुलना में सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला था। यह भारी था, खराब नहीं होता था और घर की लंबी यात्रा के लिए जहाज के गोदाम के तल में वजन के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त था। जहां वस्त्रों ने फैशन दिया, वहीं साल्टपीटर ने संप्रभुता प्रदान की। कंपनी ब्रिटिश सेना की प्राथमिक आपूर्तिकर्ता बन गई, जो अक्सर सीधे क्राउन ब्रिटिश राज को भारी मात्रा में और चौंका देने वाले मुनाफे पर शोरा बेचती थी, जहां कीमतें अक्सर लागत से 4 गुना अधिक होती थीं। इस भारी रासायनिक स्टेबलाइजर के बिना कंपनी के जहाज सुरक्षित रूप से गहरे समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते थे और ब्रिटिश राज्य अपनी बंदूकों को लैस नहीं कर सकता था। ढाका की मलमल की सुंदरता के पीछे बारूद की ठंडी वास्तविकता छिपी थी, जिसने हर व्यापारिक यात्रा को साम्राज्य के लिए एक रणनीति मिशन बना दिया था।
2: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य कुंजन।

0: पिछले काव्यांश में आपने सुना था राहुल जननी की मना स्थिति। लीजिए अब सुनिए इसके आगे।
1: अगले काव्यांश में यशोधरा राहुल को जगाने का प्रयास कर रही है कि प्रभात हो रहा है, तुम अब जागो।
0: घुसा तिमिर अलकों में भाग, जाग दुखनी के सुख जाग, जागा नूतन गंध पवन में, उठ तू अपने राजभवन में, जाग उठे खग वन उपवन में, और खगों में कलख राग, जाग दुखिनी के सुख जाग, तात रात बीती वह काली, उजियाली ले आई लाली, लदी मोतियों से हरियाली, लो लीला शाली निज भाग, जाग दुखिनी के सुख जाग। किरणों ने कर दिया सवेरा, हिमकण दर्पण में मुख हेरा, मेरा मुकुर मंज मुख तेरा, उठ पंकज पर पड़े पराग, जाग दुखिनी के सुख जाग। तेरे वैतालिक गाते हैं, स्वस्थ लिए ब्राह्मण आते हैं, गोप दुग्ध भाजन लाते हैं, ऊपर झलक रहा है झाग, झाग दुखिनी के सुख जाग। मेरे बेटा भैया राजा, उठ मेरी गोदी में आजा, भौरा नाचे बजे हाँ बाजा, सजे शाम है यासित नाग, जाग दुखिनी के सुख जाग। जाग अरे वृषमत भव मेरे, आतु शम्य उपद्रव मेरे, उठ उठ सोए शैशव मेरे, जाग स्वप्न उठ तंद्रा त्याग, जाग दुखनी के सुख जाग।
2: अम्ब स्वप्न देखा है रात, लिए मेष शावक गोदी में खिला रहे हैं तात, उसकी प्रसु चाहती है पद कर करके प्रतिपात, घेरे हैं कितने पशु पक्षी कितना यातायात, ले लो मुझको भी गोदी में सुन मेरी यह बात, हंस बोले असमर्थ हुई क्या तेरी जननी जात, आँख खुल गई सहसा मेरी माँ हो गया प्रभात, सारी प्रकृति सजल है तुझ सी भरे अश्रु अवदात।
0: बस मैं ऐसी ही निभ जाऊं राहुल निज रानीपन देकर, तेरी चिर परिचर्या पाऊं, तेरी जननी कहलाऊं, तो इस परवश मन को बहलाऊं, उबटन कर नहलाऊं तुझको, खिला पिला कर पट पहनाऊं, रीच खींच कर रूठ मनाकर, पीड़ा को क्रीड़ा कर लाऊं, यह मुख देख दुख में भी सुख से देव दया गुण गाऊं, स्नेह दीप उनकी पूजा का तुझ में यहाँ अखंड जगाऊं, डीठ लगे ना डिठोना देकर काजल लेकर तुझे लगाऊं।
2: कैसी डीट कहाँ काटोना, मान लिया आँखों में अंजन माँ किस लिए डिठोना, यही डीट लगने के लिच्छन छूटे खाना पानी, कभी कांपना कभी पसीना जैसे तैसे जीना, डीट लगी तब स्वयं तुझे ही तू है सुदबुद होना, तू ही लगा डिठोना जिसको काट बना बिछोना, कैसी ढीठ कहाँ काटूना। लोहित बिंदु बाल पर तेरे मैं काला क्यों दूमा, लेती है जो वर्ण आप तू क्यों ना वही मैं लूमा, एक इसी अंतर के मारे मैं अति अस्थिर हूँ माँ, मेरा चुंबन तुझे मधुर क्यों तेरा मुझे सलोना, कैसी ढीठ कहाँ काटूना। रह जाते हैं स्वयं चकित से मुझे देख सब कोई, लग सकती है कह माँ मुझको डीट कहाँ कब कोई, तेरा अंक लाभ कर मुझको जहाँ नहीं अब कोई, लेकर मुझे कलंक बिंदु तू बना ना चंद खिलौना, कैसी डीट कहाँ काटूना।
1: राहुल अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैंने तेरे कहने से काजल लगवा लिया, अब डिठौना क्यों? इस काव्यांश के बाद लीजिए अब ये गद्य में वार्तालाप सुनिए। इस वार्तालाप में पात्र हैं यशोधरा राहुल, यशोधरा की सखियां गंगा और गौतमी, यशोधरा की दासियां चित्रा और विचित्रा।
2: देवी, यदि वह घटना सच्ची हो तो तपस्विनी सीता देवी भी इसी प्रकार पति परित्यक्ता होकर आदि कवि के आश्रम में स्वामी का ध्यान करके कुछ लव के लिए जीवन धारण करती होंगी।
0: मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ सखी। सीता देवी ने बहुत सहा, संभवतः मैं उतना ना झेल सकती। कहते हैं स्वामी वंचित होने के साथ साथ उन्हें मिथ्या लोकापवाद भी सहन करना पड़ा था।
2: श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों ने भी बहुत सहन किया।
0: हाय, वे उनके लिए कितनी तरसी। परंतु मुझे विश्वास है मैं अपने प्रभु के दर्शन अवश्य पाऊंगी।
2: तुम्हें देखकर मुझे स्वामी वंचिता शकुंतला का स्मरण आता है। उनके पुत्र भरत की भांति ही कुमार राहुल का अभ्युदय हो, यही सबकी कामना है।
0: अहो, अभागिनी गोपा ही एक दुखिनी नहीं है, उसकी पूज्य पूर्वजाओं ने भी बड़े दुख उठाए हैं। उनके बल से मैं किसी भी प्रकार सह लूंगी गंगा।
1: निर्दयी पुरुषों के पाले पड़कर हम अबला जनों के भाग्य में रोना ही लिखा है।
0: अरे, तू उन्हें निर्दयी कैसे कहती है? वे तो किसी कीट पतंग का दुख भी नहीं देख सकते हैं।
1: तभी ना हम लोगों को इतना सुख दे गए हैं।
0: नहीं, वे अपने दुख का भागी बनाकर हमें अपना सच्चा आत्मीय सिद्ध कर गए हैं और हम सबके सच्चे सुख की खोज में ही गए हैं।
1: देवी, तुम कुछ भी कहो, परंतु मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा सोने का घर छोड़कर उन्होंने वन की धूल ही छानी, जननी जन्मभूमि की भी उन्हें कोई ममता ना हुई।
0: अरे, सदा माँ की गोद में ही बैठे रहने के लिए पुरुषों का जन्म नहीं होता, स्त्रियों को भी पति के घर जाना पड़ता है। सारा विश्व जिनका कुटुंब है, जन्मभूमि का बंधन कैसे बांध सकता है?
1: कुमार राहुल कदाचित विश्व से बाहर थे, मोह ममता तो ऐसों को क्या होगी, किंतु उनके पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा की देख रेख करना भी क्या उनका कर्तव्य ना था?
0: हमको तो उस पर भी बड़ी ममता है, हम क्या इतना भी ना कर सकेंगे? मैं कहती हूँ राहुल के जन्म ने उन्हें अमृत की प्राप्ति के लिए और भी आतुर कर दिया। परंतु अब इन बातों को रहने दें, वो आता होगा, मैं उसके सामने हंसती ही रहना चाहती हूँ। परंतु बहुधा आंसू आ जाते हैं, उसे कष्ट होता है, वह अब समझने लगा है।
2: देवी, कुमार को देखकर ही धीरज धरना चाहिए।
0: ठीक है, विपत्ति में जो रह जाए वही बहुत है। चित्रा, देख भोजन प्रस्तुत है, यही एक और उसके लिए आसन लगा। मैंने अपने हाथों उसके लिए कुछ खीर बनाई है, वह ठंडी हुई या नहीं? और जो कुछ हो आम रखना ना भूलना।
2: जो आज्ञा।
0: गंगा, तू दादाजी के यहाँ जाने योग्य उसकी वेशभूषा ठीक कर।
1: गंगा जो आज्ञा कहकर जिस द्वार से जाती है उसी से राहुल अलिंद में आता है। यशोधरा और गौतमी सामने से उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, परंतु वो चुपके चुपके उनके पीछे आना चाहता है। सामने गंगा को देखकर उससे चुप रहने का आग्रह करता है। गंगा मुस्कुराकर चुप रहती है। राहुल सहसा पीछे से माँ के गले में हाथ डालकर पीठ पर पड़ जाता है और प्रणाम प्रणाम कहकर अपना मुंह बढ़ाकर माता के मुंह से लगाकर हंसता है।
0: जीता रह बेटा।
2: मेरी जीत हो गई है। दादाजी से मैंने कहा था मेरे प्रणाम करने के पहले ही माँ मुझे आशीर्वाद दे देती है। उन्होंने कहा तू प्रणाम करने में पिछड़ जाता है, इसलिए आज मैंने आकर पहले प्रणाम कर लिया। अब तू हार गई ना?
0: वाह, मैं कैसे हार गई? तूने छिपकर आक्रमण किया है, इसे मैं तेरी जीत नहीं मानती।
2: क्यों नहीं मानती? प्रणाम करना क्या कोई प्रहार करना है जो सामने से ही किया जाए? अच्छे काम तो अज्ञात रूप से भी किए जाते हैं। यह तूने ही कहा था, नहीं कहा था?
0: बेटा, अब मैं हार गई।
2: तू हार ना मानती तो मैंने दूसरा उपाय भी सोच रखा था।
0: सो क्या?
2: मैंने दूर द्योड़ी से तुझे देखे बिना ही माँ प्रणाम करता हुआ आता।
0: बेटा, इसकी आवश्यकता नहीं। मेरा आशीर्वाद तेरे प्रणाम की प्रतीक्षा थोड़े ही करता है।
2: परंतु मेरा विनय तो सदा गुरुजनों का आशीष चाहता है। दादाजी कहते हैं, शिष्टाचार के नियम की रक्षा होनी चाहिए। इसी कारण मेरे प्रणाम करने पर ही मुझे आशीष देना चाहिए, नहीं माँ?
0: अच्छी बात है। अब मैं तेरे प्रणाम करने पर ही

0: कुमार तो कविता करने लगी हैं।
1: गौतमी, इसी को ना कविता कहते हैं। खान पान तो दो ही धन्य, आम और अम्बा का स्तन्य।
0: धन्य धन्य, परंतु ये तो दो ही पद हुए।
1: मेरा छंद क्या चौपाया है, क्यों माँ?
2: ठीक कहा बेटा,
0: भगवान करें तुम कवि होने के साथ साथ कविता के विषय भी हो जाओ।
1: माँ, कविता का विषय कैसे हुआ जाता है?
2: बेटा, कोई विशेषता धारण करके।
1: परंतु माँ, मुझे तो किसी काम में विशेषता नहीं जान पड़ती। सब बातें साधारण यथा नियम होती दिखाई पड़ती हैं। हाँ, एक तेरे रोने को छोड़कर तू हंस पड़ी, यह और भी विचित्र है।
2: अच्छा बेटा, अब भोजन कर। गौतमी, थाली मंगा।
1: माँ, मेरे साथ तू भी खा।
2: बेटा, पीछे खा लूंगी।
1: दादाजी मुझसे कहते थे तू माँ को खिलाए बिना खा लेता है, मुझे बड़ी लज्जा आई।
2: मैं क्या भूखी रहती हूँ? उचित तो यह होगा कि तू दादाजी को साथ लेकर ही यहाँ भोजन किया कर।
1: यह अच्छी रही, दादाजी तेरे लिए कहते हैं और तू दादाजी के लिए कहती है। यह भी कविता का विषय मुझे मिल गया। अच्छा, कल से दो बार तेरे साथ खाया करूँगा और दो बार दादाजी के साथ। आज तो तू मेरे साथ बैठ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
2: बेटा, हट नहीं करते, मेरी तृप्ति तभी होती है जब मैं सबको खिलाकर खाऊं।
1: तू तो खा लेगी, फिर क्या कोई खाएगा नहीं?
2: परंतु मेरे लिए ये उचित नहीं है कि जिनका भार मुझ पर है मैं उन्हें छोड़कर पहले खा लूं।
1: तो क्या मुझ पर किसी का भार नहीं?
2: बेटा, तू अभी छोटा है।
1: मैं छोटा हूँ तो क्या, बल तो मुझ में तुझसे अधिक है। चाहे परीक्षा करके देख ले, मैं घोड़े पर जमकर बैठने लगा हूँ, व्यायाम करता हूँ, शस्त्र चलाना सीखता हूँ। मेरा बाण जितनी दूर जाता है मेरे किसी समवयस्क का उतनी दूर नहीं जा सकता। तू तो मेरे साथ दो डग दौड़ भी नहीं सकती।
2: फिर भी बेटा, मैं तुझसे बड़ी हूँ।
1: मैं बड़ा होता तो
2: तू मेरा भार तुझ पर होता।
1: परंतु मैं तो तुझसे छोटा रहूंगा माँ। अच्छा, पिताजी तो बड़े हैं, वे क्यों हमारी सुध नहीं लेते?
2: लेंगे बेटा, लेंगे। तब तक तेरा भार मुझे दे गए हैं।
1: और तेरा भार किसे दे गए? दादाजी को।
2: हाँ बेटा, दादाजी को।
1: और दादाजी का भार?
2: बेटा, पुरुषों के लिए स्वावलंबी होना ही उचित है। दूसरों का भार बनना अपने पौरुष का अनादर करना है। यूँ तो सबका भार भगवान पर है, परंतु मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही भगवान हैं और तेरे गुरुजन ही।
1: तू ठीक कहती है, मैंने भी पढ़ा है मात्र देवो भव पितृ देवो भव। इसी के साथ माँ, आचार्य देवो भव भी है।
2: ठीक ही तो है बेटा, माता पिता जन्म देते हैं परंतु सफल उसे आचार्य देव ही बनाते हैं। हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए इसे बताते हैं वो।
1: सचमुच वे बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। आकाश तो मुझे भी गोल गोल दिखाई देता है, वे कहते हैं धरती भी गोल है। वे मुझको उसकी सब बातें बताएंगे।
2: क्यों नहीं बताएंगे बेटा?
1: परंतु मेरा एक सहपाठी उनसे ऐसा डरता है मानो वे देव ना होकर कोई दानव हो।
2: वह अपना पाठ पढ़ने में कच्चा होगा।
1: तूने कैसे जान लिया?
2: ये क्या कठिन है, ऐसे ही लड़के गुरुजनों के सामने जाने से जी चुराते हैं।
1: माँ, मैं तो एक दो बार सुनकर ही कोई बात नहीं भूलता, तो चाहे मेरी परीक्षा ले ले।
2: तेरे पूर्व जन्म का संस्कार है, तू उस जन्म में पंडित रहा होगा, इसलिए इस जन्म में तुझे सहज ही विद्या प्राप्त हो रही है।
1: ऐसी बात है?
2: हाँ बेटा, इस जन्म के अच्छे कर्म उस जन्म में साथ देते हैं।
1: और बुरे कर्म?
2: वो भी।
1: तो एक बार बुरे कर्म करने से फिर उनसे पिंड छूटना कठिन है?
2: यही बात है बेटा।
1: तो मैं आचार्य देव से कहकर बुरे कर्मों की एक तालिका बनवा लूंगा, जिससे उससे बचता रहूं।
2: अच्छा तो ये होगा कि तू अच्छे कर्मों की एक सूची बनवा ले।
1: अच्छी बातें तो वो पढ़ाते ही हैं।
2: तब उन्हीं को स्मरण रखना चाहिए, बुरी बातों का फल भी बुरा

0: एक और मुझे अज्ञ भी बनना पड़ेगा, जैसे आज असमर्थ बनना पड़ा है।
1: सो कैसे?
0: आज व्यायाम शाला में कूदने के लिए बढ़ाकर एक नई सीमा निर्धारित की गई। मेरे साथियों में से कोई भी वहां तक नहीं उतर पाया। मैं कूद सकता था, परंतु सबका मन रखने के लिए समर्थ होते हुए भी मैं वहां तक नहीं गया। कल ही मैंने पढ़ा था, आत्मना प्रतिकूलाणि परेशा समाचरे।
1: बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा है बेटा तूने, परंतु उसका उपयोग ठीक नहीं हुआ। तेरा कोई साथी तुझसे अधिक योग्यता दिखावे तो क्या इसे अपने प्रतिकूल समझना चाहिए? नहीं, यह तो अपने लिए उत्साह की बात होनी चाहिए। हमारे सामने जो आदर्श हों, हमें उनसे आगे आने का उद्योग करना उचित है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण देखकर दूसरों को भी साहस दिखाना चाहिए, नहीं तो वे भी उन्नति नहीं कर सकेंगे और तेरी बल बुद्धि भी विकसित ना हो सकेगी।
0: यह ले, मैं तृप्त हो गया। चित्रा, हाथ धुला और थाली ले जा।
1: परंतु तेरी भूल में ही सद्भावना थी, इससे संतोष ही है।
2: माँ बेटे बातों में ही भूल गए, थाली ठंडी हो रही है, उसका ध्यान ही नहीं।
1: सचमुच बेटा, अब भोजन कर।
0: भूख तो मुझे भी लगी थी, पर तेरी बातों में भूल गया। चलो अच्छा ही हुआ, दादाजी को सुनाने के लिए बहुत सी बातें मिल गईं। तूने भी कहा था टहलने के पीछे कुछ विश्राम करके ही खाना ठीक होता है।
1: अच्छा, अब खा, मैं चुप रहूंगी।
0: तब तो मैं खा ही नहीं सकूंगा।
1: जैसे तुझे रुचे वैसे ही सही।
0: आह, खीर बड़ी स्वादिष्ट है माँ, तू नहीं खाती तो चखकर ही देख।
1: बेटा, मैं खीर नहीं खाती।
0: मोतीचूर?
1: वह भी नहीं।
0: दाल भात, श्रीखंड, पापड़, दही बड़े, तुझे कुछ नहीं भाते?
1: बेटा, मैं तो व्रत करती हूँ, फल और दूध ही मेरे लिए यथेष्ट हैं।
0: तू बड़ी अर्सज्ञ है, मैं दादाजी से कहूँगा।
1: नहीं बेटा, ऐसा ना करना, उन्हें व्यर्थ कष्ट होगा।
0: अच्छा, तू उपवास क्यों रखती है?
1: मेरे धर्म का यह एक अंग है।
0: मेरे लिए यह धर्म कठिन पड़ेगा।
1: तुझे इसकी आवश्यकता नहीं।
0: क्यों?
1: धर्म की व्यवस्था भी अवस्था के अनुसार होती है। तू अभी छोटा है, बच्चे के व्रत उनकी माताएं ही पूरा किया करती हैं।
0: ऐसी बात है, तब तो बड़ी भूल हुई माँ।
1: अरे, अभी खाया ही क्या है?
0: मैं कितना खाऊं, मैं क्या बड़ा हूँ?
1: इसी के लिए तू छोटा है। जैसी तेरी रुचि। आ, दादाजी के यहाँ जाने योग्य वेशभूषा बना ले।
0: क्यों माँ, यह वस्त्र क्या बुरे हैं? तू फटे पुराने पहने और मैं स्वर्ण खचित पहनूं? मैं नहीं पहनूंगा। मेरे ही घूमने फिरने के और खेलने के वस्त्र क्या तेरे काशाय वस्त्रों से भी गए बीते हैं?
1: बेटा, मैं काशाय वस्त्र पहने क्या तुझे भली नहीं जान पड़ती?
0: नहीं माँ, इनसे तेरा गौरव ही प्रकट होता है, फिर भी मन ना जाने कैसा हो जाता है कभी कभी। तू इतना कठिन तप क्यों करती है?
1: तप ही मनुष्यत्व है बेटा।
0: मैं कब तप करूँगा?
1: जब अपने पिता की भांति पिता बन जाएगा। मैं तो यही जानती हूँ, आगे तेरे पिता जाने।
0: माँ, पिताजी की बात आने से तुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं उनकी चर्चा ठीक नहीं समझता।
1: बेटा, उन्हीं की चिंता करके मैं जी रही हूँ, तू इच्छानुसार जो कहना हो कहे।
0: अच्छा, मेरे ये वस्त्र तुझे नहीं भाते? साधारण वस्त्रों में तेरा असाधारण महत्व देखकर मुझे भी रत्न खचित वेशभूषा छोड़कर साधारण वस्त्रों का भी लोभ होता है।
1: परंतु तेरी राजोचित वेशभूषा से तेरे दादाजी को संतोष होता है, उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे यह त्याग करना ही चाहिए।
0: त्याग सचमुच त्याग ही है। अच्छा पिता।
1: कह, कह बेटा, कह।
0: क्या पिताजी भी ऐसी ही वेशभूषा धारण करते थे?
1: क्यों नहीं।
0: परंतु तेरे सिरहाने जो चित्र रहता है वह तो साधु सन्यासी के रूप में ही है।
1: उसे मैंने उनकी अब की अवस्था की कल्पना करके बनाया है।
0: उनका कोई राजवेश का चित्र नहीं है?
1: क्यों ना होगा,
0: तो मुझे दिखा।
1: गौतमी, है कोई चित्र?
2: वह अशोक उत्सव वाला,
1: वही ला।
0: माँ, पहले तू भी ऐसे वस्त्र भूषण पहनती होगी।
1: बेटा, कौन सा राज वैभव है जो तेरी माँ ने नहीं भोगा?
0: अब केवल माथे पर लाल लाल बिंदी ही तुझे अच्छी लगती है।
1: बेटा, यही मेरे सुख सौभाग्य का चिन्ह है।
0: ऐसी ही बिंदी मुझे भी लगा दे।
1: तेरे लिए केशर, कस्तूरी, गोरोचन और चंदन ही उपयुक्त है। रोली और अक्षत पूजा के साथ लगाऊंगी।
2: कुमार, लो यह देखो, पिताजी का चित्र।
0: ओहो, कहां ये राजसी वेश विन्यास और कहां वह सन्यास। परंतु मुख पर दोनों स्थानों में प्राय एक ही भाव है, अवस्था में कुछ अंतर है। माँ, सौम्य और साधु भाव में कोई विशेष अंतर नहीं है?
1: कोई अंतर नहीं बेटा।
2: कुमार, कैसा यह रूप?
0: मेरे जैसा। एक बार दादी जी मुझे देखकर चौंक पड़ी और बोली, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो वही आ गया। मैंने भी दर्पण में अपना मुख देखा है, क्यों माँ?
1: बेटा, तू ठीक कहता है। अरे, मेरी आंखों में यह क्या आ पड़ा?
0: निकल गया माँ, तेरा आंचल तो भीग गया। अरे, यह तो देख, पिता के पास यह कौन खड़ी है? वे उसे मरकत की माला उतार कर दे रहे हैं। वह हाथ बढ़ाकर भी संकुचित सी हो रही है, सिर नीचा है, फिर भी अधुखुली आंखें उन्हें निहार रही हैं। माँ, यह कौन है?
2: कुमार, तुम नहीं समझे?
0: अब ध्यान से देखकर समझ गया। माँ की छोटी बहन मेरी कौन होती है?
2: मौसी।
0: तो ये मेरी मौसी है। मुख माँ के मुख से मिलता है, इतना गौरव नहीं है परंतु सरलता ऐसी ही है, क्यों माँ? है ना मौसी ही?
2: कुमार, माँ की आंखें अभी भी किरकिरा रही हैं। मैं तुम्हें बता दूं, यह इन्हीं का चित्र है।
0: ओह, इतना परिवर्तन।
1: बेटा, बुरा या भला?
0: माँ, यह मैं पहले ही कह चुका हूँ, तेरे इस परिवर्तन में तेरा गौरव ही प्रकट हुआ है। यह मूर्ति सुख में भी संकुचित सी है और तू दुखीनी होकर भी गौरवशाली। यह पवित्र है, तू पावन। क्या इस अवस्था के परिवर्तन पर तुझे खेद है?
1: बेटा, तुझे संतोष है तो मुझे कोई खेद नहीं।
0: बस पिताजी आ जाएं तो मुझे पूरा संतोष है।
1: तूने मेरे मन की बात कह दी बेटा।
0: तब आज मुझे वही माला पहना दे जो पिताजी ने तुझे दी थी।
1: मैंने उसे तेरी बहू के लिए रख छोड़ा था। यह भी अच्छा है, उसे वह तेरे ही हाथों पाएगी। गौतमी, ले आ।
0: मेरी बहू की तुझे बड़ी चिंता है, इससे मुझे ईर्ष्या होती है।
1: क्यों बेटा?
0: वह आकर मेरे और तेरे बीच में खड़ी हो जाएगी, इससे मैं सहन नहीं कर सकता।
1: मेरी दो जांघें हैं, एक पर तू बैठेगा, दूसरी पर वह बैठेगी।
0: परंतु जिस जांघ पर मैं बैठना चाहूँगा उसी पर वह बैठना चाहेगी, तो झगड़ा ना मचेगा।
1: मैं उसे समझा लूंगी।
0: काहे से समझा लेगी, मुंह तो तेरे एक ही है।
1: इतना बड़ा स्वार्थी होगा तू।
0: इसमें स्वार्थ की क्या बात है माँ, यह तो स्वतत्व की बात है।
2: परंतु कुमार, अधिकार क्या अकेले ही भोगा जाता है?
0: तुम भी माँ की ओर मिल गई।
2: कुमार, मैं तुम्हारी ओर हूँ, समय आवे तब देख लेना, अभी से क्यों झगड़ा? लो यह मरकत की माला।
0: अरे, यह तो मुझे बड़ी बैठी, उतार कर माँ एक बार तू इसे पहन।
1: बेटा, मैं?
0: इस हंसी से तो तेरा रोना ही भला। पहन माँ, मैं देखूंगा।
2: देवी, माथे पर सिंदूर बिंदी धारण करती हुई किस विचार से तुम कुमार की इच्छा पूरी करने में असमंजस करती हो? जो ऐसा करने से पूर्व रोकता है वह धर्म नहीं अधर्म है।
1: हाँ, यह राजयोग है। चित्रा, दर्पण तो लाना। रहने दे बेटा, तू ही मेरा दर्पण है। अरे विचित्रा, क्या लाई?
2: जय हो देवी, महाराज ने कुमार के लिए यह वीणा भेजी है और पूछा है कि वे कब तक आते हैं।
0: वे क्या कर रहे हैं?
2: कुमार महाराज अभी संध्या करने के लिए उठे हैं।
0: जब तक वे संध्या से निवृत्त हो मैं पहुंचता हूँ।
2: जो आज्ञा।
1: अभी आपने सुना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। आज के भाग में आपने सुना यशोधरा, राहुल, यशोधरा की सखियां गंगा गौतमी और यशोधरा की दासियां चित्रा विचित्रा के संवाद। आज ये भाग यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, धनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और कलाकार थे मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद। मैं आपका दोस्त दीपक निमा
4: और मैं हूं आपके साथ स्वाति।
3: कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में आज हम बात करेंगे भारत के गौरव और विश्व विज्ञान के महान स्तंभ प्रोफेसर हरगोविंद खुराना जी के बारे में। विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने मानवता की समझ को मूलभूत रूप से बदल दिया है। प्रोफेसर हरगोविंद खुराना उन्हीं महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। अनुवांशिक कोड की व्याख्या करने और प्रयोगशाला में पहली बार कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले इस महान वैज्ञानिक की जीवन यात्रा एक छोटे से पंजाबी गांव से शुरू होकर विश्व के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान नोबेल पुरस्कार तक पहुंची। उनका जीवन कठिन परिश्रम, समर्पण, दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक अनुपम उदाहरण है।
4: श्रोताओं, हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर नामक एक अत्यंत ही छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव मुल्तान जिले में स्थित था जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। उनके जन्म के समय ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था और अविभाजित भारत की पंजाब की धरती पर बसा एक साधारण ग्रामीण क्षेत्र था। हरगोविंद खुराना के पिता का नाम श्री गणपत राय खुराना और माता का नाम श्रीमती कृष्ण देवी था। उनके पिता गांव के पटवारी यानी राजस्व अधिकारी थे जो एक सरकारी पद था लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध नहीं था। उस समय पटवारी का काम भूमि रिकॉर्ड रखना, राजस्व संग्रह में सहायता करना और गांव के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना होता था।
3: परिवार में हरगोविंद सबसे छोटी संतान थे। उनकी 4 बड़े भाई बहन थे जिनमें से 1 बहन और 3 भाई थे। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी लेकिन गणपत राय खुराना शिक्षा के महत्व को गहराई से समझते थे। उस समय के ग्रामीण भारत में विशेषकर एक साधारण पटवारी के परिवार में शिक्षा को इतनी प्राथमिकता देना असामान्य था। लेकिन गणपत राय जी दूरदर्शी थे और उन्होंने अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया।
4: रायपुर गांव अत्यंत छोटा था, इतना छोटा कि वहां केवल 100 परिवार ही रहा करते थे। गांव में कोई उचित स्कूल भी नहीं था। शिक्षा की सुविधा केवल एक शिक्षक के रूप में थी जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। ये प्रारंभिक शिक्षा की अत्यंत सीमित व्यवस्था थी लेकिन यहीं से हरगोविंद खुराना की शिक्षा यात्रा आरंभ हुई। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार में केवल उनके पिता ही साक्षर थे, उनकी माता और अन्य परिवार जन पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय के ग्रामीण भारत की ये सामान्य बात हुआ करती थी। इस परिस्थिति में उनके पिता का शिक्षा के प्रति समर्पण और भी प्रशंसनीय हो जाता है।
3: हरगोविंद खुराना की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही उस एकमात्र शिक्षक से शुरू हुई लेकिन उनके पिता जानते थे कि बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें बड़े शहर भेजना होगा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मुल्तान भेजने का निर्णय लिया जो उस समय पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर था। मुल्तान में हरगोविंद खुराना ने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में प्रवेश लिया। DAV स्कूल आर्य समाज द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान थे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते थे। यहाँ उन्हें पहली बार औपचारिक और व्यवस्थित शिक्षा मिली। मुल्तान में रहकर पढ़ाई करना एक गरीब परिवार के लिए आर्थिक बोझ था।
4: युवा हरगोविंद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आवास, भोजन और अन्य खर्चों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था लेकिन उनकी प्रतिभा और लगन ने जल्द ही शिक्षकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वो विशेष रूप से विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1943 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में प्रवेश लिया। लाहौर उस वक्त पंजाब की सांस्कृतिक और शैक्षिक राजधानी हुआ करता था। पंजाब विश्वविद्यालय उत्तरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। यहाँ उन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और 1943 में अपनी डिग्री हासिल की।
3: बीएससी में उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्हें स्नातकोत्तर एमएससी की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। 1945 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी की उपाधि प्राप्त की। उनके एमएससी के परिणाम भी अत्यंत उत्कृष्ट थे। ये समय भारतीय इतिहास में अत्यंत उथल पुथल का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इन सभी परिस्थितियों के बीच एक गरीब परिवार से आए युवक का अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रखना उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था।
4: एमएससी पूरी करने के बाद हरगोविंद खुराना के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें भारत सरकार की ओर से विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। ये उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि बहुत कम भारतीय विद्यार्थियों को यह अवसर मिलता था। 1945 में वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उन्हें लिवरपूल विश्वविद्यालय में दाखिला मिला, जो उस समय रसायन विज्ञान में शोध के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ उन्होंने प्रोफेसर रोजर जे एस बियर के निर्देशन में पीएचडी का शोध कार्य शुरू किया।
3: प्रोफेसर बियर जैविक रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ थे और विशेष रूप से न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड के क्षेत्र में काम कर रहे थे। ये वो क्षेत्र था जो आगे चलकर खुराना के करियर का केंद्र बनने वाला था। प्रोफेसर बियर के मार्गदर्शन में खुराना ने न्यूक्लियोटाइड्स के रसायन विज्ञान पर शोध किया। लिवरपूल में उनके वर्ष अत्यंत परिश्रम और सीखने के वर्ष थे। युद्ध के बाद इंग्लैंड में जीवन कठिन था, संसाधन सीमित थे। एक विदेशी विद्यार्थी के रूप में खुराना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी एकाग्रता अपने शोध पर बनी रही।
4: 1948 में उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी पीएचडी पूरी की। उनका शोध प्रबंध न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण और गुणों पर था। ये काम भविष्य में डीएनए और आरएनए के अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। पीएचडी पूरी करने के तुरंत बाद खुराना ने पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए स्विट्जरलैंड जाने का निर्णय लिया। वे ज्यूरिक के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए, जो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है।
3: वहां उन्होंने प्रोफेसर व्लादिमीर प्रिलॉग के साथ काम किया। प्रिलॉग स्वयं एक महान रसायनज्ञ थे। उन्हें बाद में 1975 में नोबेल पुरस्कार मिला और कार्बनिक रसायन विज्ञान में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। खुराना ने 1948-49 में ज्यूरिख में प्रिलॉग के साथ काम करते हुए कार्बनिक संश्लेषण की उन्नत तकनीकों को सीखा। स्विट्जरलैंड में रहते हुए उनकी मुलाकात एस्तेर एलिजाबेथ सिबलर से हुई, जो स्विस मूल की थीं। ये मुलाकात उनके व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी।
4: 1949 में खुराना वापस इंग्लैंड लौटे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। यहाँ उन्हें प्रोफेसर अलेक्जेंडर रॉबर्ट स्टॉट के साथ काम करने का मौका मिला। ये खुराना के करियर में एक निर्णायक मोड़ था। प्रोफेसर टॉड उस समय न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान में अग्रणी शोधकर्ता थे। उन्होंने 1957 में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम पर काम करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हासिल किया।
3: कैम्ब्रिज में टॉड की प्रयोगशाला में काम करते हुए खुराना ने न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान में गहरी विशेषज्ञता विकसित की। उन्होंने फास्फोएस्टर बंधन बनाने की नई विधियों पर काम किया, जो डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। कैम्ब्रिज में उनके वर्ष अत्यंत उत्पादक रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में अपनी पहचान बनाई। यहीं उन्होंने वे तकनीकें और दृष्टिकोण विकसित किए जो बाद में उनके नोबल पुरस्कार विजेता बनने में काम आने वाले थे।
4: 1952 में खुराना को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय वैंकूवर कनाडा में एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये उनके लिए एक स्वतंत्र शोध प्रयोगशाला स्थापित करने और अपने विचारों को मूर्त रूप देने का भी अवसर था। 1952 में ही उन्होंने एस्तेर एलिजाबेथ स्लिबलर से विवाह कर लिया। ये विवाह उनके जीवन में स्थिरता और खुशियां लेकर आया। एस्तेर न केवल एक सहयोगी जीवन साथी थी, बल्कि उन्होंने हमेशा खुराना के शोध कार्य को समझा और उसमें सहयोग भी दिया।
3: विवाह के बाद दोनों कनाडा चले गए। वैंकूवर में खुराना ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। यहाँ उन्हें सीमित संसाधन थे, यहाँ उनके पास सीमित संसाधन थे और उन्हें अपनी प्रयोगशाला को शुरू से खड़ा करना था। लेकिन ये चुनौती उनके लिए अवसर भी थी। कनाडा में उन्होंने न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान पर अपना काम जारी रखा। उन्होंने विशेष रूप से न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण की नई और अधिक कुशल विधियां विकसित की। उनका काम धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने लगा।
4: वैंकूवर में रहते हुए उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटी जूलिया एलिजाबेथ और 2 बेटे डेव रॉय और एमिली एन। परिवार और शोध के बीच संतुलन बनाना कठिन था, लेकिन एस्तेर के सहयोग से ये संभव हुआ। 1952 से 1960 तक ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उन्होंने न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स पर काम किया और डीएनए और आरएनए के घटकों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण प्रगति की।
3: इस दौरान वैज्ञानिक समुदाय में डीएनए की संरचना को लेकर बड़ी उत्तेजना थी। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। ये खोज आणविक जीव विज्ञान में क्रांतिकारी थी। खुराना का काम इस खोज के साथ पूरी तरह से प्रासंगिक था, क्योंकि वे डीएनए के रासायनिक घटकों पर काम कर रहे थे। 1960 में खुराना के करियर में फिर एक नया महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन अमेरिका में प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट फॉर एंजाइम रिसर्च के को डायरेक्टर के पद का प्रस्ताव मिला। ये एक प्रतिष्ठित पद था और बेहतर संसाधनों और सुविधाओं का अवसर था।
4: खुराना और उनका परिवार मेडिसिन विस्कॉन्सिन चले गए। यहाँ उन्हें एक उत्कृष्ट शोध वातावरण और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और सहयोगियों की टीम मिली। विस्कॉन्सिन में उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम किया। 1960 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिक समुदाय एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जूझ रहा था। डीएनए में संग्रहित अनुवांशिक सूचना किस तरह प्रोटीन के निर्माण में अनुवादित होती है, ये जीवन विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न था।
3: खुराना ने इस समस्या को रासायनिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने सोचा कि यदि वे कृत्रिम रूप से ज्ञात अनुक्रम के न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला बना सकें, तो वे परीक्षण कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम किस अमीनो एसिड को कोड करता है। ये विचार सरल लग सकता है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन था। उस समय न्यूक्लियोटाइड्स को एक विशेष क्रम में जोड़ना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। खुराना और उनकी टीम ने वर्षों तक बहुत कठिन परिश्रम किया।
4: उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम बनाए, फिर धीरे धीरे अधिक जटिल अनुक्रम बनाए। उन्होंने ये दिखाया कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह, जिसे कोडॉन कहा जाता है, एक विशेष अमीनो एसिड को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए UUU अनुक्रम फेनिल एलानाइन अमीनो एसिड को कोड करता है।
3: खुराना की विधि ने वैज्ञानिकों को पूर्ण अनुवांशिक कोड को समझने में मदद की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि 64 संभावित कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कैसे कोड करते हैं। कुछ अमीनो एसिड एक से अधिक कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं और कुछ कोडॉन प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करने या रोकने के संकेत देते हैं। इस काम के लिए खुराना को 1968 में रॉबर्ट W. हॉली और मार्शल W. निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए गौरव का क्षण था।
4: 1968 का नोबेल पुरस्कार खुराना के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। स्टॉकहोम में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उनके काम को अनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए मान्यता दी। नोबेल पुरस्कार ने खुराना को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। भारत में उनकी सफलता का व्यापक रूप से जश्न मनाया गया। एक छोटे से पंजाबी गांव से आया व्यक्ति विश्व के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान को प्राप्त कर रहा था। ये एक प्रेरणादायक कहानी थी।
3: भारत सरकार ने उन्हें 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। विभिन्न भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानक उपाधियां प्रदान की। नोबेल पुरस्कार के बाद भी खुराना अपने काम में लगे रहे। कई वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आराम कर लेते हैं या प्रशासनिक भूमिकाओं में चले जाते हैं, लेकिन खुराना नहीं। उनके लिए विज्ञान एक जुनून था, ना कि केवल एक करियर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद खुराना ने एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, एक पूर्ण कार्यात्मक जीन को पूरी तरह से कृत्रिम रूप से संश्लेषित करना। ये 1960 और 1970 के दशक में विज्ञान कथा जैसा लगता था।
4: 1970 के दशक की शुरुआत में खुराना और उनकी टीम ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। उन्होंने तय किया कि वो एक विशेष टीआरएनए के लिए जीन को कृत्रिम रूप से बनाएंगे। ये अत्यंत जटिल कार्य था, जिसमें लगभग 77 न्यूक्लियोटाइड्स को सही क्रम में जोड़ना था। ये काम अत्यंत श्रमसाध्य था। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को अलग से संश्लेषित करना, फिर उसे सही क्रम में जोड़ना और ये सुनिश्चित करना कि कोई त्रुटि ना हो, ये सब अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उस समय के तकनीकी साधन आज की तुलना में बहुत सीमित थे।
3: खुराना की टीम ने वर्षों तक इस परियोजना पर काम किया। अंततः 1970 में उन्होंने सफलतापूर्वक एक कार्यात्मक टीआरएनए जीन को पूरी तरह से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया। ये आणविक जीव विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर था। ये पहली बार था जब मनुष्य ने एक पूर्ण जीन को रासायनिक रूप से बनाया था। इस उपलब्धि के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसने यह प्रदर्शित किया कि जीवन के आणविक आधार को न केवल समझा जा सकता है, बल्कि प्रयोगशाला में पुनर्निर्मित भी किया जा सकता है। इसने आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए।
4: इस काम के लिए खुराना को 1972 में अमेरिकी सरकार द्वारा नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया, जो अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है। और फिर शुरू हुआ MIT में एक नया अध्याय। 1970 में खुराना ने एक और महत्वपूर्ण करियर निर्णय लिया। उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय छोड़ दिया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल हो गए। MIT विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में से एक है।
3: MIT में उन्हें अल्फ्रेड पी स्लोन प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पद दिया गया। यहाँ उन्हें उत्कृष्ट सुविधाएं और प्रतिभाशाली सहयोगियों का समूह मिला। MIT में उन्होंने अपने शोध को नई दिशाओं में विस्तारित किया। MIT में रहते हुए खुराना ने झिल्ली प्रोटीनों, विशेष रूप से रोडोप्सिन पर काम करना शुरू किया। रोडोप्सिन वो प्रोटीन है जो हमारी आंखों में प्रकाश को पहचानने में मदद करती है। ये काम उनके पहले के काम से काफी अलग था, लेकिन ये दर्शाता है कि खुराना हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे।
4: उन्होंने रोडोप्सिन जीन का संश्लेषण किया, जो उनकी पहली कृत्रिम जीन से कहीं अधिक जटिल था। ये जीन लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा था। इस काम ने झिल्ली प्रोटीनों की संरचना और कार्य को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। MIT में उनके वर्ष अत्यंत उत्पादक रहे। उन्होंने कई डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से कई बाद में स्वयं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बने। हरगोविंद खुराना का व्यक्तित्व उनके वैज्ञानिक कार्य की तरह ही असाधारण था। वो एक अत्यंत अनुशासित, समर्पित और विनम्र व्यक्ति थे। उनके सहयोगियों और विद्यार्थियों ने उनके बारे में जो संस्मरण लिखे हैं, वो एक जटिल लेकिन प्रेरणादायक व्यक्तित्व को दर्शाते हैं।
3: खुराना अपनी प्रयोगशाला में अत्यंत कठोर थे। उन्हें पूर्णता की उम्मीद थी। अपने आप से और अपने विद्यार्थियों से वे प्रायोगिक डेटा में थोड़ी सी भी अशुद्धता को स्वीकार नहीं करते थे। कई बार वे अपने विद्यार्थियों से प्रयोगों को बार बार दोहराने के लिए कहते थे, जब तक कि परिणाम पूरी तरह से सुसंगत ना हो जाए। लेकिन जो मानक वे दूसरों से अपेक्षा करते थे, वही मानक वे स्वयं भी बनाए रखते थे। वे अक्सर अपने विद्यार्थियों से भी अधिक समय प्रयोगशाला में बिताते थे। सुबह जल्दी आना और देर रात तक रुकना उनकी आदत थी। सप्ताहांत पर भी वे प्रयोगशाला में काम करते हुए दिखाई देते थे।
4: उनके एक पूर्व विद्यार्थी ने लिखा है, प्रोफेसर खुराना जैसा काम करना कठिन था, लेकिन ये सबसे अधिक शिक्षाप्रद अनुभव भी था। उन्होंने हमें न केवल विज्ञान सिखाया, बल्कि वैज्ञानिक अखंडता और समर्पण का अर्थ भी सिखाया। खुराना बेहद विनम्र थे। नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद भी वह कभी अहंकारी नहीं हुए। वे अपने काम को एक बड़े वैज्ञानिक प्रयास का हिस्सा मानते थे, न कि व्यक्तिगत उपलब्धि। वो हमेशा अपने सहयोगियों और विद्यार्थियों और पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार करते थे।
3: व्यक्तिगत जीवन में वे निजी व्यक्ति थे। वे सार्वजनिक प्रचार और मीडिया का ध्यान पसंद नहीं करते थे। साक्षात्कार देना या सार्वजनिक भाषण देना उन्हें असहज करता था। वे अपना अधिकांश समय परिवार और प्रयोगशाला के बीच बांटते थे। उनकी बोलने की शैली संक्षिप्त और सटीक थी। वे बिना किसी अनावश्यक विस्तार से अपनी बात कहते थे। ये गुण उनके वैज्ञानिक लेखन में भी दिखाई देता था, स्पष्ट, सटीक और तथ्य आधारित।
4: हरगोविंद खुराना के व्यक्तिगत जीवन में उनकी पत्नी एस्तेर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1952 में हुआ उनका विवाह एक सच्चे साझेदारी का उदाहरण था। एस्तेर न केवल एक पत्नी थी, बल्कि खुराना की सबसे करीबी मित्र, सलाहकार और सहयोगी भी थी। एस्तेर खुराना के शोध को गहराई से समझती। हालांकि वह स्वयं वैज्ञानिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा खुराना के काम में गहरी रुचि दिखाई। कई बार खुराना घर पर एस्तेर के साथ अपने शोध की चुनौतियों पर चर्चा करते। एस्तेर की समझ और प्रोत्साहन खुराना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।
3: उनके तीन बच्चे जूलिया एलिजाबेथ, डेव राय और एमिली एन एक बहु सांस्कृतिक परिवेश में बड़े हुए। घर में भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखा गया, जबकि बच्चे अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में पढ़े। खुराना चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी भारतीय जड़ों को याद रखें। खुराना एक समर्पित पिता थे। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के चलते वे अपने परिवार के साथ थोड़ा ही समय बिता पाते थे, फिर भी वे अपने बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि रखते थे और उन्हें कठिन परिश्रम और ईमानदारी का महत्व सिखाते थे।
4: परिवार में हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाएं बोली जाती थी। खुराना चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें। घर में भारतीय भोजन बनाया जाता और भारतीय त्योहार भी मनाए जाते। अमेरिकी नागरिकता लेने के बावजूद खुराना ने अपने भारतीय मूल को कभी नहीं भुलाया। वे हमेशा अपने आप को भारतीय अमेरिकी के रूप में पहचानते थे। भारत के प्रति उनका लगाव जीवन भर बना रहा। वे नियमित रूप से भारत आते रहे। यहाँ वे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा भी करते, व्याख्यान देते और भारतीय वैज्ञानिकों से मिलते। उन्होंने कई भारतीय संस्थानों को सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान किया।
3: खुराना भारतीय विज्ञान की प्रगति में गहरी रुचि रखते थे। वे चाहते थे कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व नेता बने। उन्होंने कई बार भारत सरकार को वैज्ञानिक शिक्षा और शोध में अधिक निवेश करने की सलाह दी। उन्होंने कई प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थियों को अपनी प्रयोगशाला में प्रशिक्षण प्रदान किया। वे भारतीय विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन देते थे और उनके करियर में मार्गदर्शन प्रदान करते थे।
4: अपने साक्षात्कारों में वे अक्सर भारतीय मूल का उल्लेख किया करते। उन्होंने कहा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार भारत में ही मिले। जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। वे अपने पिता के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ थे, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। खुराना केवल अपने शोध तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई। वे कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्ड में भी रहे। उन्होंने अनगिनत शोध पत्रों की समीक्षा की और युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन प्रदान किया
3: और विभिन्न वैज्ञानिक अकेडमियों के सदस्य थे, जिनमें नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज USA, रॉयल सोसाइटी UK और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी शामिल है। ये सदस्यताएं वैज्ञानिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लिया और व्याख्यान दिए। हालांकि वे सार्वजनिक भाषण से बचना पसंद करते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो सभी वैज्ञानिक ध्यान से सुनते थे। खुराना ने अपने जीवन काल में कई डॉक्टरल विद्यार्थियों और पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, उनमें से कई आज दुनिया भर में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं।
4: जी हाँ श्रोता, उनका प्रशिक्षण कठोर था, लेकिन उनके विद्यार्थियों को उत्कृष्टता देने के लिए तैयार किया करता था। हरगोविंद खुराना को उनके जीवन काल में अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिले। नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन में रॉबर्ट W. हॉली और मार्शल W. हॉली निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से, लुइसा ग्रॉस हॉर्विट्स पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जीव विज्ञान या जैव रसायन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग में योगदान के लिए, नेशनल मेडल ऑफ साइंस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया, अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान था। विलॉर्ड गिब्स पुरस्कार अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा उन्हें प्रदान किया गया।
3: दोस्तों, गार्डनर फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड 1980 कनाडा के गार्डनर फाउंडेशन द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां, जिनमें शामिल है शिकागो विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, अल्बर्ट आइंस्टीन मेडिकल कॉलेज, पंजाब विश्वविद्यालय, भारत। खुराना का वैज्ञानिक योगदान आधुनिक जैव विज्ञान की नींव में शामिल है। उनके काम के बिना आज भी आणविक जीव विज्ञान, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना नहीं की जा सकती।
4: अनुवांशिक कोड की व्याख्या। उनके काम ने यह स्पष्ट किया कि DNA में संग्रहित सूचना किस तरह प्रोटीन में अनुवादित होती है। ये जीवन विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है। इसी तरह कृत्रिम जीन संश्लेषण, उनके द्वारा विकसित तकनीकों ने आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज जो भी जेनेटिक संशोधन होता है वो खुराना के मूलभूत काम पर ही आधारित है।
3: उनकी विधियों ने DNA अनुक्रमण तकनीकों के विकास में योगदान दिया, जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों को संभव बनाया। उनके काम में जीन थेरेपी, अनुवांशिक निदान और व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास में योगदान दिया। आज का बहुअरब डॉलर का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग खुराना और उनके समकालीनों के मूलभूत शोध पर आधारित है।
4: 2001 में खुराना के जीवन में एक त्रासदी घटी। उनकी प्यारी पत्नी एस्तेर का निधन हो गया। ये खुराना के लिए विनाशकारी झटका था। एस्तेर केवल उनकी पत्नी नहीं थी, वे उनकी सबसे करीबी मित्र थी, विश्वास पात्र और जीवन साथी थी। लगभग 50 वर्ष उन्होंने साथ बिताए थे। एस्तेर की मृत्यु के बाद खुराना गहरे अवसाद में चले गए। जो व्यक्ति हमेशा अनुशासित और केंद्रित रहा वो टूट गया। उन्होंने धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से भी दूरी बनाना शुरू कर दी।
3: उनके सहयोगियों और मित्रों ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन एस्तेर की अनुपस्थिति एक ऐसा रिक्त स्थान छोड़ गई जिसे कोई नहीं भर सकता था। खुराना अपने बच्चों के करीब रहे, लेकिन उनका एकाकीपन गहरा था। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में काम करना जारी रखा, लेकिन पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। विज्ञान, जो हमेशा उनका जुनून रहा था, अब उनके दर्द से ध्यान भटकाने का एक तरीका बन गया था।
4: 2000 के दशक में खुराना की उम्र और स्वास्थ्य दोनों ने उन्हें धीमा कर दिया। वे 80 के दशक में थे और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने MIT में अपना पद बनाए रखा और जब तक संभव था अपनी प्रयोगशाला में जाते रहे। उनके अंतिम वर्षों में वे अधिक चिंतनशील हो गए। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को याद किया, रायपुर के छोटे से गांव से लेकर MIT की प्रयोगशाला तक। ये एक असाधारण यात्रा थी।
3: वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। परिवार उनके लिए सांत्वना का स्रोत बन गया था। वे अपने पोते पोतियों को अपने गांव और अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने अपनी मानसिक तीक्ष्णता बनाए रखी। वे वैज्ञानिक साहित्य पढ़ते रहे और विज्ञान में नए विकास में रुचि रखते रहे।
4: 9 नवंबर 2011 को 89 वर्ष की आयु में प्रोफेसर हरगोविंद खुराना का मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड में निधन हो गया। उनकी मृत्यु शांतिपूर्ण थी अपने परिवार के बीच। उनके निधन पर विश्वभर के वैज्ञानिक समुदाय ने शोक व्यक्त किया। MIT विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन के खबर से भारत भर में शोक की लहर दौड़ गई और देश ने एक साथ अपने इस महान व्यक्तित्व को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: MIT के अध्यक्ष ने कहा, प्रोफेसर खुराना एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन के सबसे मौलिक प्रश्नों को समझने में मदद की। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के महान सपूत के रूप में याद किया और कहा, उनका जीवन युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। MIT ने उनके सम्मान में एक स्मारक व्याख्यान श्रृंखला स्थापित की। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ने उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। पंजाब विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, वहां उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया।
4: भारत सरकार ने 2018 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें याद करते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने उनके नाम पर पुरस्कार और फेलोशिप स्थापित की। प्रोफेसर खुराना का जाना विज्ञान जगत के लिए अपूर्णीय क्षति था। उनका जीवन सत्य, शोध और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा है। उन्हें हमारा सादर नमन। तो श्रोताओ, आज के हमारे इस कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में हमने चर्चा की प्रोफेसर हरगोविंद खुराना की, जो भारत के गौरव और विश्व विज्ञान के एक महान स्तंभ हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं।
3: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा
4: और मैं हूँ स्वाति।
3: नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विदेश से कीर्ति एवं अनुभव अर्जित कर इन दोनों को स्वदेश की सेवा में लगने का संकल्प लिए हुए स्वामी जी कोलंबो में पदार्पण करने के साथ ही अपने लक्ष्य साधन में लग गए। स्वदेश की कल्याण कामना तथा उचित कार्य प्रणाली खोज निकालने का प्रयास वे पहले भी कर चुके थे, परंतु अब उनके व्यक्तित्व तथा भाव व्यक्त करने की क्षमता में एक ऐसा परिवर्तन आ चुका था जिसके फलस्वरूप लगता था सफलता तो उनकी मुट्ठी में है। रामनाथ से चलकर परमकुड़ी, मानमदुरा, मदुरा, त्रिचनापल्ली व तंजोर आदि नगरों में अनेक प्रकार से अभिनंदित होकर स्वामी जी ने कुंभकोणम में पदार्पण किया। वहां के निवासी स्वामी जी को 2 अभिनंदन पत्र भी दिए। वहां भी उनके भाषण हुए और 3 दिन वहां विश्राम कर स्वामी जी मद्रास की ओर रवाना हो गए।
1: स्वामी जी मद्रास आ रहे हैं, ये समाचार पाकर मद्रास के निवासी उनकी सादर अभ्यर्थना के लिए पहले से ही तैयार हो गए। प्रत्येक भवन के शिखर पर रंग बिरंगे झंडे फहराने लगे। राजपथों को बड़े बड़े तोरणों से सुसज्जित किया गया तथा सारी मद्रास नगरी अपूर्व रूप से सुशोभित होकर स्वामी जी की सादर अभ्यर्थना के लिए साग्रह प्रतीक्षा करने लगी।
0: 6 फरवरी प्रातः काल ही नगर निवासी दल के दल रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आते ही सहस्र कंठों से निकली हुई जय ध्वनि ने आकाश को विदीर्ण कर दिया। स्वामी जी की जय, भारत माता की जय।
1: स्वामी जी के उतरते ही उन्हें पुष्प मालाओं से सज्जित कर दिया गया। उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर कैसल करनान नामक विशाल भवन की ओर ले चले। कुछ दूर जाकर उत्साही युवकों ने गाड़ी से घोड़ों को अलग कर दिया और स्वयं खींच कर ले जाने लगे। फूलों की वर्षा हो रही थी, जय घोष हो रहे थे। महिलाएं सड़क पर ही पंच प्रदीप से उनकी आरती उतार रही थी। एक वृद्ध महिला सामने आकर स्वामी जी के दर्शन कर भाव विभोर उठी।
0: स्वामी जी के आगमन से सारा मद्रास शहर जिस तरह झूम उठा था, उसके संबंध में हिंदू संवाद पत्र ने लिखा था,
2: आज रेलवे स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद की अभ्यर्थना के लिए उपस्थित विराट जन समूह के उत्साह व धर्म अनुराग का उचित रूप से वर्णन करना संभव है। मद्रास के प्रमुख व्यक्तियों ने उपस्थित होकर विश्वविख्यात सन्यासी का जो गौरवपूर्ण स्वागत किया है, इसमें इस महादेश की अंतर्निहित धार्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई है। भारत में धर्म संस्कार को चिरकाल से ही इसी प्रकार की अभ्यर्थनाएं प्राप्त हुई हैं। कट्टरपंथी हिंदू जाति के चरित्र की विशेषता नहीं है और ये भी नहीं है कि वर्तमान आचार व्यवहारों का परिवर्तन अवांछनीय है। यदि किसी पुरानी प्रथा को दूर कर किसी नए नियम का प्रचार करना हो तो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति को ही अधिकारी बनकर उसे संपन्न करना चाहिए। जब कोई धीर हृदय पवित्र आत्मा तथा सच्चा संस्कारक निष्काम होकर व्यक्तिगत उद्देश्य सिद्धि की इच्छा को छोड़कर जन कल्याण के उद्देश्य से दृढ़ता के साथ अग्रसर होता है तो आचार नियम शून्य में लुप्त हो जाते हैं। चिरकाल की धारणाएं व आदर्श आवश्यकता अनुसार दूर फेंक दिए जाते हैं तथा बद्ध मूल रूढ़ियां, राजनीति व मतवाद विलुप्त हो जाते हैं।
3: स्वामी जी के प्रचार कार्य की सफलता का यही एक रहस्य है। समुद्र लांग कर वे विदेशों में वेदांत का झंडा उठाकर ले गए थे, इसलिए हम चिराचरित प्रथा के अनुसार उनकी सादर अभ्यर्थना कर रहे हैं। उनके प्रति हमारी सादर श्रद्धा के साथ हमारा विश्वास है कि पाश्चात्य देशों में उनके द्वारा जिस प्रकार वहाँ की जनता का कल्याण हुआ है, उसी प्रकार उनके द्वारा इस देश में भी जन साधारण का विशेष कल्याण होगा।
1: दूसरे दिन मद्रास के विक्टोरिया हॉल में 5,000 श्रोताओं के सम्मुख उन्होंने मेरी समर नीति शीर्षक पर प्रसिद्ध भाषण दिया। इसके बाद क्रम से भारतीय जीवन में वेदांत का प्रयोग, भारतीय महापुरुषगण, हमारा वर्तमान कर्तव्य तथा भारत का भविष्य शीर्षक पर 4 भाषण दिए। इसी समय एक दिन एक बड़े विद्वान स्वामी जी के साथ वेदांत के संबंध में चर्चा करने के लिए आए। स्वामी जी का कथन सुनकर उन्होंने कहा,
2: स्वामी जी वेदांत के अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद आदि सभी प्रकार के मतवाद सत्य हैं तथा ये चरम उपलब्धि के पथ में भिन्न भिन्न सीढ़ियां हैं। ये बात तो पहले किसी भी आचार्य ने नहीं कही।

0: ये कार्य मेरे लिए ही नियत था, इसीलिए तो मैंने जन्म लिया है।
1: स्वामी जी जिस समय पाश्चात्य देशों में धर्म प्रचार के कार्य में नियुक्त थे, ठीक उसी समय मद्रास के भक्त युवकों ने नाना प्रकार की निंदा, व्यंग और विरोधिता को सुनकर भी अविचलित रहकर स्वामी जी द्वारा प्रदर्शित पद्धति से वेदांत के प्रचार कार्य में आत्मनियोग किया था। आज 4 वर्ष के बाद उनके आराध्य देव के स्वदेश लौटने के उपलक्ष में मद्रास नगरी 9 दिन के विराट महोत्सव का आयोजन कर रही है। ये देख उन युवकों के आनंद की सीमा न रही। शिष्यगण मद्रास में स्थायी रूप से एक प्रचार केंद्र की स्थापना करने की बात सोचने लगे। मद्रास के प्रतिष्ठित व्यक्ति जनसाधारण द्वारा आग्रह के साथ यह प्रस्ताव अनुमोदित करने पर उन्होंने स्वामी जी के पास अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि उस प्रचार केंद्र की स्थापना के लिए वे मद्रास में कुछ दिन और ठहरे।
2: प्रचार केंद्र की स्थापना के संकल्प का स्वामी जी ने बड़े आनंद के साथ अनुमोदन किया और वचन दिया कि इस कार्य के लिए वे शीघ्र ही एक सुयोग्य गुरु भाई को मद्रास भेज देंगे। तदनुसार थोड़े ही दिनों के बाद स्वामी रामकृष्णानंद ने आकर मद्रास का कार्यभार ग्रहण किया। इसी बीच इधर कलकत्ते से आग्रह पूर्वक आमंत्रण आने लगे। विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव भी निकट जानकर गुरु को चाहने वाले शिष्यों तथा स्वामी जी के मित्रों ने दुखी होकर उन्हें कलकत्ता जाने के लिए विदा दी।

लगभग 4 वर्षों तक अमेरिका यूरोप में रहने पर स्वामी जी को भारत के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी। वतन से दूर रहने पर उनका देश प्रेम और भी ज्यादा दृढ़ हुआ। भारत के निर्धन जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष को ऊपर उठाने का प्रण और भी स्पष्ट और बलशाली हो गया था। बहुत दिनों तक भारत के गांव-गांव तथा नगर नगर में भ्रमण कर स्वामी जी ने जनसाधारण की सामाजिक व अर्थनैतिक दुर्गति का गंभीर सहानुभूति से निरीक्षण किया था। और जैसा हम पहले कह चुके हैं, स्वामी जी का विश्वास नष्ट हो चुका था कि उन्नति के लिए राजा, महाराजा, धनी व उच्च वंशियों द्वारा किसी प्रकार से स्थायी रूप में कोई सहायता नहीं मिल सकेगी। स्वामी जी को विश्वास था कि दाता के आसन पर बैठकर केवल दूर से ही पाश्चात्य लोकहित के आदर्श पर स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों की स्थापना कर देने से ही जनसाधारण की उन्नति नहीं होगी, और दाता या उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि सेवक के रूप में अन्य वस्त्र

0: परंतु वे बेचारे नहीं जानते कि कहां से वो आघात आ रहा है। वे ये भी भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं और इसका परिणाम है दासत्व व पशुत्व।
1: समाज की इसी हीन अवस्था के प्रतिकार के लिए वे चाहते थे।
0: लाखों नरनारी पवित्रता के अग्निमंत्र में दीक्षित होकर विश्वास रूपी कवच को धारण कर निर्धन पतित व पद दलितों के प्रति सहानुभूति से उत्पन्न साहस के साथ कमर कसकर समस्त भारत का भ्रमण करें तथा मुक्ति सेवा और समाज की उन्नति व समानता के संदेश को घर घर में प्रचार करें।
2: इस महान व्रत के लिए स्वामी जी ने जिन्हें बुलाया उन्हें विशेष रूप से ये याद रखने के लिए कहा।
0: प्रतिष्ठित उच्च पदस्थ अथवा धनियों पर कोई भरोसा ना रखो, भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है। पद मर्यादा ही निर्धन किंतु विश्वासी तुम ही लोगों पर भरोसा है। मैं 12 वर्ष तक हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस चिंता को लेकर घूमा हूं। मैं तथा कथित अनेक धनी व बड़े आदमियों के घर गया हूं, उन्होंने मुझे पाखंडी समझा है। लगभग 1 शताब्दी से हमारा देश समाज संस्कारकों तथा उनके तरह तरह के समाज संस्कार संबंधी प्रस्तावों से श्रस्त होता रहा है, परंतु साथ ही ये भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 100 वर्ष के संस्कार आंदोलन द्वारा समग्र देश का कोई भी स्थायी कल्याण सिद्ध नहीं हुआ है। गत शताब्दी में जिन सब संस्कारों के लिए आंदोलन हुआ है उनमें से अधिकांश दिखावे के ही थे। संस्कार की वे चेष्टाएं केवल उच्च वर्णों से संबंधित थीं, अन्य वर्णों से नहीं। संस्कार करना हो तो ऊपर ऊपर देखने से काम ना बनेगा, भीतर प्रवेश करना होगा, जड़ तक जाना होगा। 10 वर्षों से भारतवर्ष के अनेक स्थानों में घूम फिरकर मैंने देखा कि समाज सुधार के लिए सभाओं तथा समितियों से देश छा गया है, परंतु असल में जिनका रक्त चूसकर भद्र कहलाने वाले व्यक्तिगण भद्र पुरुष बने बैठे हैं उन निर्धन सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए कोई सभा मैंने कहीं नहीं देखी।
2: स्वामी जी ने अपने पूर्ववर्ती समाज सुधारकों की दोष त्रुटियों को निर्भीकता के साथ दिखाते हुए इस सिद्धांत पर पहुंचने के लिए मजबूर हुए कि
0: सुधारकों का उद्देश्य व्यर्थ हुआ है, और इसका कारण ये है कि उनमें से बहुत कम व्यक्तियों ने अपने धर्म का भली भांति अध्ययन और चर्चा की है, और उनमें से एक भी व्यक्ति उस साधना के पथ पर नहीं गया है जो सभी धर्मों के उत्पत्ति स्थल को समझने के लिए आवश्यक है। ईश्वर की कृपा से मैं दावा करता हूं कि मैंने इस समस्या की मीमांसा की है।
1: पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता व संस्कृति के संपर्क में आकर भारत के नागरिक जीवन में जो चंचलता उपस्थित हुई थी उसके परिणाम में 2-4 प्रतिभाशाली व उदार हृदय संस्कारकों ने प्राचीन समाज के प्रति विद्रोह की घोषणा की थी, और इस विद्रोह से ही पाश्चात्य कार्य प्रणाली के अंध अनुकरण कर संस्कार युग का सूत्रपात हुआ।
2: इन सारी चेष्टा में यूरोपीय भाव की दास्ता को देख गंभीर दुख के साथ स्वामी जी ने इसका प्रतिवाद किया, क्योंकि इसके संबंध में स्वामी जी के विचार इस प्रकार थे।
0: पहली बात यह है कि संसार युग का कोई ऐतिहासिक बोध नहीं है। संस्कार युग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि हिंदू राष्ट्र कितनी बड़ी प्राचीन सभ्यता का वंशधर है। ये राष्ट्र कितने ही संस्कारों के बीच में से होकर युग युगांतर में कितने ही महापुरुषों को वक्ष पर धारण करता हुआ आज यहां आकर उपस्थित हुआ है, और इस राष्ट्र का वर्तमान व भविष्य इसके उसी प्राचीन इतिहास द्वारा विशेष रूप से नियंत्रित होगा। दूसरी बात के बारे में हमें समझना होगा कि संस्कार युग को जातीय विशेषत्व का कोई ज्ञान न था। संस्कार युग ने इस बात को सोचने की चिंता भी नहीं की कि प्रत्येक जाति की एक विशेषता होती है, स्वतंत्रता होती है, जिसके लिए वो जीवित रहने की मांग कर सकती है, जिसके अभाव में उसका विनाश या मृत्यु अनिवार्य है। भारतीयों की जातीय विशेषता क्या है ये वे भी नहीं समझे, और न इस विषय में आत्मरक्षा की किसी प्रकार चेष्टा ही उन्होंने की। अपने देश या अपनी जाति के नाम पर कोई सार्थक अभिमान भी सुधार युग में न था।
1: संस्कारकों की कार्य प्रणाली को स्वामी जी श्रद्धा की दृष्टि से देखने में असमर्थ रहे। उंगली पर गिने जाने योग्य कुछ अंग्रेजी शिक्षित नागरिक व उच्च वर्णों के बीच जो आंदोलन सीमित था, वो समाज के सभी स्तरों में अलग नहीं फैला। इसका कारण हमने पहले ही बताया है, जातीय जीवन से विजातीय तथा वैदेशिक भाव में अनुप्राणित संस्कारों को लक्ष्य कर स्वामी जी ने अपने निजी आदर्श की इस प्रकार घोषणा की।
0: संस्कारकों ने समाज को तोड़ मरोड़ कर जिस रूप में समाज संस्कार की प्रणाली प्रदर्शित की है, उसमें वे सफल न हो सके। इन संस्कारकों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनसे बड़ा संस्कारक हूं। वे थोड़ा थोड़ा संस्कार चाहते हैं, पर मैं चाहता हूं जड़ से संस्कार। हमारा उनका भेद है केवल संस्कार की प्रणाली में। उनकी राह है तोड़ डालने की और मेरी प्रणाली है संगठन की। मैं संस्कार में विश्वास नहीं करता, मैं स्वाभाविक उन्नति में विश्वासी हूं।
2: पाश्चात्य देश से लौटकर स्वामी जी ने केवल ध्वंस मूलक संस्कार आंदोलन से ही अपने को पृथक नहीं कर लिया, वरन दूसरी ओर ये भी कह दिया कि सब प्रकार की सामाजिक उन्नति के विरोधी, प्राचीन समाज के युक्तिहीन कुसंस्कारों के भी वे पक्षपाती नहीं है। वे ये भी नहीं मानते कि समाज में किसी विशेष भाग से कुछ आचार व्यवहार को उठा देने भर से अथवा कुछ नवीन आचार व्यवहार को प्रचलित कर देने से ही जाति की उन्नति होगी। उन्होंने हमें बार बार बताया कि
0: अपनी सब प्रकार की दुर्दशा, अवनति व दुख के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे उच्च वंशीय पूर्वज भारतीय सर्वधारण जनता को पद दलित करते थे, क्रमशः वे असहाय हो गए। इस सतत अत्याचार से बेचारे निर्धन लोग धीरे धीरे ये भी भूल गए कि वे मनुष्य हैं। सदियों से उन्हें बाध्य होकर क्रीतदास की तरह केवल पानी भरा है और लकड़ी काटी है। उन्हें ऐसा विश्वास करने के लिए शिक्षा दी गई है कि गुलामी करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, पानी पिलाने तथा बोझ ढोने के लिए ही वे पैदा हुए हैं। और यदि कोई उनके प्रति दया प्रकट कर उनसे सहानुभूति की दो एक बातें कहने जाए, तो हमारे दूसरी जाति के लोग सर्वहारा की उन्नति कराने से पीछे हट जाते हैं।
1: वंश परंपरा अथवा जन्मगत कुल संबंधी गुणों की दुहाई देकर जिस बर्बर व पाशविक मतवाद के द्वारा मनुष्य को हीन, अंत्यज आदि नाम दिए जाते हैं, उस मूर्ता पर स्वामी जी ने तीव्र भाषा में आक्रमण किया है, क्योंकि ये भावना भारत में कूट कूट कर भरी है। उन्होंने कहा कि सुधार की जरूरत यहीं पर है, बाहर से नहीं, भीतर से इस मानसिक श्रेष्ठत्व के अभिमान रूपी रोग को दूर करना होगा। इसी भ्रांत मतवाद पर आक्रमण करते हुए स्वामी जी ने कहा,
0: यदि वंश परंपरा के नियमानुसार ब्राह्मण विद्या सीखने के लिए अधिकतर योग्य है, तो ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए धन व्यय न करके सर्वहारा की शिक्षा के लिए सारा धन लगा दो। दुर्बल की सहायता पहले करो। ब्राह्मण यदि बुद्धिमान होकर ही पैदा हुए हैं तो दूसरों की सहायता के बिना ही शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, पर जो लोग बुद्धिमान होकर जन्म ग्रहण नहीं करते, शिक्षकों की आवश्यकता उन्हीं के लिए है। मुझे तो यही न्याय व युक्ति संगत लगता है। अतः इन बेचारे दीन जनों को, भारत के इन पद दलित मनुष्यों को उनका वास्तविक स्वरूप समझाना होगा। जाति, वर्ण और सबलता व दुर्बलता के भेदभाव को छोड़कर सभी स्त्री पुरुषों एवं प्रत्येक बालक बालिका को सुना दो और सिखा दो कि सबल, दुर्बल, उच्च, नीच सभी के हृदय में अनंत आत्मा विद्यमान है। अतः सभी व्यक्ति महान बन सकते हैं, सभी

0: जिस समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा हिंदू विश्वविद्यालय आदि की किसी ने कल्पना तक न की थी, उस समय स्वामी जी ने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्था स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया था जिस पर विदेशियों का किसी प्रकार का अधिकार न हो। लौकिक शिक्षा को जातीय आदर्श के अनुकूल बनाने के लिए उनकी इच्छा थी कि वे भारत के अनेक केंद्रों में अनेक शिक्षालयों की स्थापना करें।
1: उच्च वर्णों की शिक्षा व सदाचार, जिन पर उनका तेज व गौरव निर्भर है, निम्न जातीय गण भी बेरोक टोक प्राप्त कर सकें, यही नवीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता होगी।
0: कोलंबो से मद्रास तक स्वामी जी ने जितने भी व्याख्यान दिए उनमें समाज सुधार का मुद्दा वो जरूर ले आते थे। भारत माता के प्रति उनका प्रेम उनके इस प्रसिद्ध भाषण में दिखता है।
1: आगामी 50 वर्ष तक तुम लोग एकमात्र स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि की आराधना करो। इन वर्षों में दूसरे देवताओं को भूल जाने में भी कोई हानि नहीं। दूसरे देवगण सो रहे हैं। इस समय तुम्हारा एकमात्र देवता है तुम्हारा राष्ट्र। सभी स्थानों में उसका हाथ है। उसके सतर्क कान भी सभी जगह मौजूद हैं। वो सभी स्थानों में व्याप्त है। तुम लोग किसी निष्फल देवता की खोज में दौड़ रहे हो और अपने सामने और चारों ओर जिस देवता को देख रहे हो उस विराट की उपासना नहीं कर रहे हो। ये सब मनुष्य और ये सब पशु ही तुम्हारे ईश्वर हैं और तुम्हारे स्वदेशवासी गण ही तुम्हारे प्रथम देवता हैं। मुझे खेद है कि जिन्हें बुलाया वे ना आए। अनेक सदियों के संस्कार, गतिहीन जीवन यात्रा का भार इतने अल्प समय में दूर नहीं हो सकता।
2: वे समाज को अखंड रूप से लेते थे। वे अंश को नहीं वरन समग्र को लेकर विचार करते थे। खंड खंड रूप से किसी विशेष प्रथा को उठा देने के लिए विगत सदी की इस व्यर्थ चेष्टा को न दोहराकर वे जाति के प्रत्येक अंग में स्वाभाविक स्वास्थ्य फिर से लौटा लाना चाहते थे। इस शरीर में यौवन के आगमन से जिस प्रकार सभी अंग पुष्ट वो विकसित हो उठते हैं, उसी प्रकार जाति यदि स्वस्थ बलशाली वो क्रियाशील है तो जहां पर जिस संस्कार की आवश्यकता होगी वो स्वयं ही सुसंपन्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, मैं संस्कार में विश्वास नहीं रखता, स्वाभाविक उन्नति का विश्वासी हूं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो अभी आपने सुने हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रम, अब ये सभा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो FM 90.8 MHz रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दिलकश जुगलबंदी, जिसमें 5 वाद्य यंत्र शामिल हैं। सितार पर हैं स्मिता वाजपेयी, संतूर पर श्रुति अधिकारी, वायलिन पर डॉक्टर एम ललिता, मृदंगम पर लावण्य राजमणि और तबले पर हैं मिताली विचूरकर। तो आइए लुत्फ लेते हैं इस बेमिसाल जुगलबंदी का।

0: तो श्रोताओं, इस खूबसूरत जुगलबंदी के बाद अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर मोनिका शाह का गायन।
1: प्रथम प्रहर का राग राग यमन की प्रस्तुति कर रहे हैं। देवो दान मोहे मांगत सुर भीख दास तिहारो। इट्स इन विलंबित एकताल एंड इट विल बी फॉलोड बाय मध्यलय तीन ताल। रटना लगी तोरे बलमा।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे का। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं? हाँ? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
2: ओफ, क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकोपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटता ही।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं है, अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माय फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर। और मैं,
3: देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा,
2: है?
3: मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे अरे सुनिए, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
5: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब, नाश्ता तो कर लूंगी पर आज है ना वो है ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता। देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी। तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब रो मत रो नको। मालूम है मेरे को सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या करूँ सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना मैं ही जाती हूँ।
5: रो
3: हो गई ना तेरी चाय। अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ,

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: हाँ, बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है, हमारी मेहनत साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ, हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ, आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अटपका ये भर दो तुम टिफिन में यार, पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तो उठा लाओ उसे, जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ। अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
0: सच
2: लाओ, लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफ, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो जी हाँ। एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा, क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल, जान ही दे देते हैं ना माँ बाप अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
2: क्या?
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा,
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या,
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा,
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटाकरण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट
1: कहते
0: भर खाना
1: हो।
0: खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करम का तैसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी, जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़े मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूं भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भवा। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जाने दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहां से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एक आध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो दास हुए। चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैया?
0: हाँ,
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले ही लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो?
0: हाँ,
3: सुनना जरा।
0: हाँ, हाँ,
3: देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के,
0: अब जलाओ।
3: जल गया, जल जल जल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान। भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है
3: यार। चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई। कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी? अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है, चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: हाँ पढ़ो। देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
0: हा।
3: अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: वाह। नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की गैस। अरे बाप रे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आंच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझे?
3: हाँ,
0: है?
3: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: एक जैसी है?
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ, हाँ, हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन शारदा सिन्हा का। उसके बाद प्रस्तुति होगी तबला वादन की, जिसे पेश करेंगे नीलेश, और आखिर में सुनाया जाएगा गायन अक्षिता पाटिल का। तो सबसे पहले सुनिए गायन शारदा सिन्हा का।

और श्रोताओं, नीलेश के तबला वादन सुनने के बाद अब आखिर में प्रस्तुति दी जा रही है गायन की, जिसे पेश कर रही हैं अक्षिता पाटिल।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत दानिश को। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया, लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चाबंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन, कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन, ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: मैं आई कम इन सर?
3: यस कम इन, फरमाइए।
2: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपेंसेशन का सर।
3: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी? अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहां वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर्जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ पर? प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर वामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदर से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूं सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन? कपाल भारती जी। अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन।

0: ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
1: मतलब ये कि अब नहीं, नहीं सर वो।
0: हाँ
2: ओ, भाई बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे। हाँ?
3: गुड मॉर्निंग सर।
2: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
2: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
2: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
2: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयारी नहीं हुए वो लोग।
2: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुरसेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुरसेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर?
2: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
2: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
2: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
2: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
2: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
2: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
2: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
2: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
2: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
2: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
2: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
2: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
2: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर सात।
4: सोचकर उत्तर दीजिए, सोचकर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं?
3: कह दिया ना सर, सात वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को सात वचन देते हैं। तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? साथ ही ना।
4: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
4: हाँ,
3: अंधे कवि सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको।
3: हाँ।
4: वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया।
4: हाँ।
3: तुलसीदास।
4: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए।
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है? हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ।
3: जी।
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, आप बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा?
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर?
4: ठीक है। चतुर्सेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
4: हाँ।
3: सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
2: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
1: धन्यवाद जी। चतुर सेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है तो 2 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
1: एक आदमी अगर किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है तो 2 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4। सर 4 दिनों में।
1: थोड़ा सोचकर चतुर सेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई, जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना?
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
1: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को 2 दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब 2 आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो 2 दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना?
1: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा, फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
1: वो कैसे?
3: अरे सर, फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, 2-2 लोगों के 2 गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और 4 के 4 हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
1: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा, गोली मारी आदमी आदमी को। मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
3: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
1: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
3: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
1: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
3: सर 50 किलोमीटर का।
1: मगर कैसे?
3: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
2: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
3: जी,
2: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
3: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
2: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
3: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
2: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
3: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
3: बहन छायावती ने।
2: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
3: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया। बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
2: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
3: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
2: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
3: बिल्कुल सर, लूट

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 9वीं कड़ी लेकर आपके साथ हाजिर हूं। फिर से एक बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में 23 और 24 जून को यह युद्ध लड़ा जा रहा था नर्मदा और गौर नदी के मध्य की नरई घाटी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थानों पर इस प्रकार खड़ी कर दी कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों तरफ से उन पर हमला बोल दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। हाथी और घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष बाण तीर तलवारों और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज गया। युद्ध समाप्त होने को था। गोंड सेनापति पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। दोनों ही सेनाओं में अनेक सैनिक हताहत भी हुए। रानी दुर्गावती की हाथी सेना का संचालन फौजदार अर्जुन सिंह बखीला कर रहे थे। उनका नाम अर्जुन सिंह बैस या अर्जुन सिंह बघेल भी मिलता है। उस समय सेना में हाथियों का बड़ा महत्व था। फौजदार अर्जुन सिंह बखीला संपूर्ण हाथी सेना का संचालन करते रहे और बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन शाम होते होते इस युद्ध में फौजदार अर्जुन सिंह बखीला वीर गति को प्राप्त हो गए। ये गोंड सेना के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। लेकिन इतनी बड़ी क्षति होने के बाद भी आखिर सूरज ढलने से पहले रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की तरफ धकेल दिया। आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची मुगल सेना के साथ घाटी से जान बचाकर वापस भागने लगे और इस प्रकार गोंड रानी दुर्गावती की विजय हुई। पूजा जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों की ओर से आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, गोंड रानी दुर्गावती की यहाँ पर विजय हुई तो इस विजय से तो गढ़ा की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई होगी।
1: जी हाँ, ये खुशी की बात तो थी ही, रानी दुर्गावती की विजय हुई थी
0: जी
1: और गढ़ा राज्य की विजय हुई थी। यह विजय भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखती है
0: जी।
1: निश्चित ही गढ़ा की सेना में खुशी की लहर तो दौड़ी गई होगी
0: जी,
1: किंतु नेतृत्व कर रही रानी दुर्गावती और उनके सेनापतियों ने संयम नहीं खोया। रात को गढ़ा की सेना के खेमे में आज के युद्ध के बारे में समीक्षा की गई
0: जी।
1: और अगले दिन की योजना भी बनाई जाने लगी
0: जी।
1: इधर रात होने से पहले ही मुगल सेनापति आसफ खां की विशाल मुगल सेना नरई के निकट पहुंच चुकी थी और सेना ने पास में ही अपना शिविर गाड़ लिया था, इसलिए अगले दिन सेनापति आसफ खां की विशाल सेना से सामना होना निश्चित था।
0: तो मतलब ये बात रानी के पास पहुंच चुकी थी कि आसफ खान भी वहां अपनी सेना लेकर आ रहा है।
1: बिल्कुल। तो अब जो योजना बनाई जानी थी वो उसी हिसाब से बनाई जानी थी कि अगले दिन आसफ खान की विशाल सेना के साथ में युद्ध करना होगा। तो योजना बनाते समय बीच में एक सुझाव आया
0: जी
1: कि क्यों ना मुगल सेना के शिविर पर रात को ही धावा बोल दिया जाए
0: जी।
1: थकी हुई सेना पर रात के अंधेरे में चारों ओर से धावा बोलकर आसान जीत हासिल की जा सकती थी, लेकिन गढ़ा की सेना इससे सहमत नहीं हुई। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध भी था, इसलिए एक मत से इसे नकार दिया गया।
0: वाह पूजा जी, आपने हमारे पिछले एपिसोड में भी हमें बताया था कि हमेशा से हम युद्ध कला कहते आ रहे हैं, कोई युद्ध सिर्फ एक कोई शब्द होता ही नहीं। आपने बताया था इतिहास में हम इसे युद्ध कला के नाम से जानते हैं और कला हमेशा नियमों से बंधी हुई होती है, तो इसी वजह से शायद ये भी बात यहाँ पर हुई। और देखिए कितनी अच्छी बात है श्रोताओं कि हम अपने दुश्मन पर भी पीठ पीछे हमला नहीं करते। रात के वक्त थके हुए सैनिकों पर हमला करना एक अच्छा मौका हो सकता था रानी के लिए, एक बहुत अच्छा। रानी दुर्गावती के लिए क्योंकि उनके पास सेना कम थी और आसफ खान की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने युद्ध के मैदान में ही जंग करना उचित समझा। तो पूजा जी, अगले दिन क्या हुआ, किस तरह युद्ध आरंभ हुआ और क्या क्या हुआ?
1: सुबह हुई और नरई की घाटी में विशाल मुगल सेना प्रवेश कर गई
0: जी।
1: दूसरी ओर गढ़ा की सेना भी दलबल के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। योजना के अनुसार आज के युद्ध का नेतृत्व गढ़ा राज्य के उत्तराधिकारी राजा वीर नारायण को करना था। जैसी कि हमने पहले भी बात की थी कि वह इस समय सिर्फ 16-17 वर्ष के रहे होंगे। गढ़ा के सैनिक भी पूरी तैयारी से थे। मैंने एक लोकगीत में सुना था कि जब गौंड सैनिक युद्ध के लिए तैयार होते थे तो वे एक खास फूल का रस अपने कपड़ों पर छिड़कते थे।
0: अच्छा।
1: इस फूल का रस भगवा रंग का हुआ करता था और भगवा छींटे सभी सैनिकों में उत्साह का संचार करते थे।
0: वाह, क्या बात है।
1: तो युद्ध आरंभ हुआ। गढ़ा की ओर से राजा वीर नारायण ने सेना की कमान संभाली। उनकी ओर से शम्स खां मियाना और मुबारक बिलूच भी बहादुरी से युद्ध का संचालन कर रहे थे।
0: जी, ये वही अफगानी लड़ाके थे जो रानी से परास्त होकर उनकी सेना में शामिल हुए थे।
1: बिल्कुल, ये वही थे।
0: जी।
1: दूसरी ओर से मुगल सेनापति आसफ खां की सेना भी पूरे दमखम के साथ लड़ी। युद्ध में धनुष बाण तीर तलवार बरछे भाले की टनकार लगातार गूंज रही थी। दोनों सेनाओं के सैनिक हताहत भी हो रहे थे। समय के साथ युद्ध की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। घोड़े पर सवार राजा वीर नारायण भी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। तभी उन्होंने मुगल सेना को घाटी से पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त कर ली, किंतु कुछ समय बाद मुगल सेना ने फिर से आक्रमण कर दिया और वीर नारायण ने फिर उन्हें परास्त कर दिया और पीछे धकेल दिया। यह क्रम 3 बार चला। तीसरी बार भी राजा वीर नारायण ने मुगल सेना को परास्त किया और उन्हें नरई की घाटी से पीछे भागने पर मजबूर कर दिया।
0: वाह, तो इसका मतलब जो वीर नारायण थे, कुंवर वीर नारायण, राजा वीर नारायण, वो सिर्फ 16-17 साल के थे और उस उम्र में इतना शौर्य, इतना पराक्रम, तो मतलब शुरू से वो भी युद्ध कला में पारंगत किए गए थे।
1: जरूर, युद्ध कला में शस्त्रों अस्त्रों में उन्हें पारंगत किया ही गया होगा।
0: जी,
1: उसका विद्या अध्ययन उन्होंने किया ही होगा। अब युद्ध आगे बढ़ा।
0: जी।
1: और चौथी बार मुगल सेना फिर से जोर लगाते हुए अधिक संख्या में दोबारा नरई में प्रवेश कर गई।
0: जी।
1: लेकिन जैसा हम जानते हैं कि आसफ खां के साथ तोपखाना भी आया था।
0: जी।
1: और अब तक तोपखाना भी पूरा सजा लिया गया था। तोपें आग उगलने के लिए तैयार हो गई थी और आग उगलने लगी थी। दोपहर का समय हो रहा था। युद्ध अपने जोरों पर था। अचानक से राजा वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो गए। जैसे ही रानी को यह पता चला, उन्होंने युद्ध की कमान अपने हाथों में ले ली। उनके विश्वस्त सेनापतियों ने वीर नारायण को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से निकालने की जिम्मेदारी उनके महावत पर सौंपी।
0: जी।
1: गढ़ा की सेना की कुछ टुकड़ियां वीर नारायण को घेर कर इस प्रकार युद्ध लड़ती रही कि शत्रु सेना को पता भी नहीं चला और राजा वीर नारायण को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया।
0: जी।
1: किसी भी युद्ध में राजा का बचना अनिवार्य है।
0: जी।
1: यदि राजा ही मर जाए तो फिर युद्ध तो समाप्त हो जाता है और दूसरी ओर की सेना जीत जाती है।
0: लेकिन पूजा जी, जब राजा वीर नारायण को सुरक्षित नरई से निकाल लिया गया तो फिर तब सेना का संचालन ऐसी स्थिति में किसने किया?
1: राजा वीर नारायण के युद्ध क्षेत्र से चले जाने के बाद
0: जी।
1: युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली।
0: जी।
1: उनके सेनापति तो युद्ध लड़ ही रहे थे। रानी दुर्गावती अपने प्रशिक्षित हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन करने लगी।
0: जी।
1: उनके हाथी का नाम सरमन था और सरमन के महावत का नाम आधार सिंह बखीला था।
0: अच्छा।
1: जिन्हें बघेला भी कहा जाता है।
0: जी।
1: युद्ध जोरों पर था। खूब जोर शोर से लड़ाई हो रही थी। भीषण युद्ध चल रहा था। रानी दुर्गावती पूरे पराक्रम से लड़ रही थी। शाम होने को थी और एक लोकगीत है। लोकगीत में इस समय का वर्णन हमको मिलता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाती
0: हूँ
1: कि काली को रूप बनाए के दुर्गा झपटत जाए, काली को रूप बनाए के दुर्गा झपटत जाए, रक्त लोहू के नदिया हो तुरते दईस है रे बहाय। यानी कि रानी जो है वो काली के रूप में
0: जी।
1: दुर्गा के रूप में दूसरे शत्रु सेना पर झपट रही हैं और रक्त की नदियां बह रही हैं। अड़े रहो सब मग में हो या सबे ला सिखाए, जीत के डंका बजाए के माता मन मुस्काए। ऐसी तरह जीत रही हैं शत्रु सेना पर, ऐसी भारी पड़ रही हैं कि वो मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और सबसे कह रही हैं कि डटे रहो, जीत हमारी होगी।
0: बिल्कुल। रणमा जूझे धरे तलवार, रणमा जूझे धरे तलवार, माता दुर्गा कहाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए। ये भी एक सैला लोकगीत हमें पूजा जी ने ही बताया था। तो पूजा जी, फिर आगे युद्ध किस तरह से आगे बढ़ा?
1: दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध हो रहा था और युद्ध इस स्तर पर पहुंच गया कि अब निर्णय होने को ही था
0: जी।
1: कि अचानक हाथी सरमन पर बैठी रानी दुर्गावती को युद्ध के दौरान एक तीर दाई कनपट्टी पर जा लगा। रानी ने उस तीर को अपने हाथों से निकालकर फेंक दिया। इस बीच शत्रु सेना ने अपना शिकंजा और जोर से कस दिया, उन पर नुकीले और जहर भुजे तीरों की बौछार कर दी
0: जी।
1: इससे पहले कि रानी संभल पाती, एक दूसरा तीर रानी दुर्गावती की गर्दन में जा धसा और एक और तीर उनके सीने को बेधते हुए निकल गया। इतने तीर एक साथ लगने से रानी मूर्छित होने लगी, किंतु इस अवस्था में भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वह अच्छी तरह

0: के साथ घृणित व्यवहार करते प्रजा से देखा नहीं जाता। रानी अपने गढ़ा और अपनी प्रजा का अपमान होते हुए नहीं देख सकती थी।
1: निश्चित रूप से एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी रानी के समक्ष। वो मूर्छित होने को थी, पूरी तरह से मूर्छित नहीं हुई थी और जान का खतरा उन पर मंडरा रहा था, वो ये बात जानती थी। उसके बाद भी उनका जीवट इतना बड़ा था, उनकी जिजीविषा इतनी बड़ी थी कि वो जीते जी तो अपने आप को दुश्मन के हाथ में नहीं सौंपना चाहती थी ताकि गढ़ा के लोगों का अपमान न हो। वाह क्या बात है, धन्य है रानी दुर्गावती। तो पूजा जी, जैसा कि आपने बताया उस समय हारे हुए लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, खास तौर पे ये जो मुगल थे उनका इस तरह का कुछ जो भी बर्बर तरीके थे, वो क्या उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: जैसा हम जानते हैं, जब मुगल सेनाएं जीतती थीं तो वह उन महिलाओं के साथ भी घिनौना कृत्य करती थी जो युद्ध में शामिल भी नहीं होती थी।
1: जी।
0: जीत के बाद मुगल सेनाएं गाँव और कस्बों में घुस जाती थी और खेतों और खलियानों को नष्ट कर देती थी। घोड़े हाथी सैनिकों के पैरों तले हरी भरी फसलें रौंद दी जाती थी, उनमें आग लगा दी जाती थी। जिसके हाथ जो लगता था वह निर्दोष लोगों से लूट लेता था। मंदिरों मठों पर हमला बोलकर उन्हें ध्वस्त किया जाता था। मूर्तियों को तोड़ा जाता था। जो विरोध करता था उसके साथ बड़ा ही घृणित व्यवहार किया जाता था। जबरदस्ती धर्मांतरण होते थे। बड़ा ही भयावह और घृणित दृश्य होता होगा। मंदिरों महलों घरों खेतों खलिहानों में रखे धन संपदा अनाज की लूटपाट तो होती ही थी। स्त्रियों बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसका तो वर्णन करना भी असंभव है। उनका जितना अपमान शारीरिक मानसिक तौर पर किया जा सकता था वह सभी किया जाता था। इसलिए ही तो जौहर प्रथा आरम्भ हुई। स्त्रियां घिनौने शत्रुओं के हाथ लगे इससे पहले वह आग में जलकर या जल समाधि लेकर या किसी भी प्रकार से स्वयं को खत्म कर लेती थीं, जौहर कर लेती थीं। और यहाँ नरई में तो मामला ही गंभीर था। यह तो रानी दुर्गावती थी, वह भी युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक गढ़ा का नेतृत्व करते हुए युद्ध लड़ती हुई रानी
1: जी।
0: उसे तो वह कतई नहीं छोड़ते
1: जी।
0: यदि वह जीवित बंदी बना ली जाती तो उनके साथ होने वाले घृणित अपराध के बारे में तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था
1: जी।
0: यदि युद्ध में इस प्रकार किसी का मृत शरीर भी प्राप्त होता था तो उसके साथ शिरोच्छेद या अंगोच्छेद आदि घृणित कार्य किए जाते थे।
1: कितने विभत्स दृश्य रहे होते होंगे जो हमें इतिहास के पन्नों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसे देखकर पढ़कर जो अभी हम महसूस कर रहे हैं वही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो उन दृश्यों की तो शायद हम वाकई कल्पना भी नहीं कर सकते। पूजा जी, फिर जब रानी को तीर गर्दन में लगा, एक तीर उनके सीने के पार हो गया, वो मूर्छित होने लगी, तो तब क्या हुआ युद्ध का, क्या हुआ सेना का?
0: जब रानी को एक तीर गर्दन में और दूसरा तीर सीने पर लगा तो रानी लहूलुहान हो गई और मूर्छित होने लगी। तब रानी दुर्गावती ने अपने महावत आधार सिंह बघेला को कहा कि वह अपनी कटार निकाले और उनके जीवन का अंत कर दे
1: जी।
0: किंतु महावत आधार सिंह बघेला तो उन्हें अपनी माँ जैसा मानते थे
1: जी।
0: वह अपनी माँ को कैसे मार सकते थे? उन्होंने रानी दुर्गावती के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि वह ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकते
1: जी।
0: वह अपनी माँ को अपनी कटार से नहीं मार सकते। उन्होंने हाथ जोड़कर रानी से निवेदन किया कि उन्हें किसी भी प्रकार से बचाकर वह युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। रानी दुर्गावती सिर्फ उन्हें आज्ञा दें, वह कैसे भी अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा ले जाएंगे, शत्रुओं के हाथ नहीं लगने देंगे
1: जी।
0: किंतु रानी जानती थी शत्रु सेना के अनेक सेनापति उन्हें चारों ओर से बुरी तरह से घेर चुके हैं
1: जी।
0: सभी उन पर निशाना साधे हुए हैं। महावत आधार सिंह बघेला कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अब रानी दुर्गावती को बचाना असंभव था।
1: और फिर रानी दुर्गावती तो रणक्षेत्र को छोड़कर, अपनी सेना को छोड़कर वैसे भी वहां से नहीं जाती
0: जी। हाँ
1: देखिए श्रोताओं, इसलिए उनके बारे में आज भी हमें लोकगीतों से जो जानकारी प्राप्त होती है वो कुछ इस तरह की है। रणमा जूझे धरे तलवार, माता दुर्गा कहाए, नाम आसफ दुश्मन के, गई से धरी धरी हार, सज धज के आवे तिसरैया, फौजी धरे हथियार, ताक नसाना महारानी के हो नहीं काय उपचार, जख्मी चोट लगे से सतन माँ, बही रक्तन के धार, जोर फिरंगी माथा माँ, मोहे नहीं जावे आंच, नारी के तन आए, बचा हूं यही हवे मोला साचे। तो फिर पूजा जी, क्या रानी के जो महावत थे उन्होंने बात उनकी मानी या फिर उन्होंने कोई और तरीका निकाला?
0: रानी दुर्गावती भयानक दर्द से कराह रही थी
1: जी।
0: उन्हें अनेक तीर लगे थे, वह लहू लुहान थी। शत्रु सेना इससे पहले कि कुछ समझ पाए उन्हें निर्णय लेना ही था। समय ही तो नहीं था, हर क्षण भारी था
1: जी।
0: विपदा सामने खड़ी थी, शत्रु सेना आगे बढ़ रही थी, रानी लहू लुहान थी, गणा राज्य की इज्जत दांव पर लगी थी, पल पल भारी था। बिना देर किए तभी रानी ने अपने ही कमर से बंधी कटार निकाली और अपने ही सीने में घोंप ली। क्षण भर में रानी दुर्गावती के प्राण निकल गए। उस वीरांगना के बलिदान को देखकर जैसे सारी सृष्टि थम गई, तलवारों की गूंज रुक गई, सन्नाटा पसर गया। उस वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने राज्य के लिए सहर्ष ही अपने प्राण नौछावर कर दिए।
1: और तभी तो देखिए, आज इतने सालों बाद, इतनी सदियों बाद, हम आज भी उनका नाम कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से लेते हैं। शौर्य की उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। रानी दुर्गा जो कहा है, आज भी वो रानी दुर्गा के समान जिन्हें गढ़ा के लोग मानते थे, आज वो पूरी दुनिया में वीरांगना रानी दुर्गावती कहलाती हैं। पूजा जी, सुना है कि इस दृश्य को पेंटिंग के रूप में भी उकेरा गया है, क्या ये बात सही है?
0: हाँ, जैसा कि हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि मुगल साहित्यकारों ने, लेखकों ने, चित्रकारों ने रानी दुर्गावती को हमेशा बहुत साहसी, निर्भीक और परिस्थितियों के आगे न झुकने वाला बताया है
1: जी।
0: तो मुगल शासक अकबर के जो दरबारी लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने ही अकबरनामा नामक ग्रंथ भी लिखा है
1: जी।
0: ये अकबरनामा 1590 से 1595 के बीच कभी लिखा गया और इसमें बहुत सारा वर्णन तो है ही, साथ में अंदर बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं। और वर्तमान में ये जो ओरिजिनल अकबरनामा है, ये लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है।
1: अच्छा।
0: और मुझे 2016 में ये देखने का मौका भी मिला
1: जी।
0: तब मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि अकबरनामा में रानी दुर्गावती के बारे में क्या कहा गया है या उन्हें दर्शाया गया है। तो अकबरनामा में पूरे 2 पेज को मिलाकर एक पेंटिंग बनाई गई है और इसमें नरई के युद्ध का वह पल चित्रित किया गया है जिसमें रानी दुर्गावती को तीर लग चुके हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये पेंटिंग यदि हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं
1: जी।
0: रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर बैठी हुई हैं
1: जी।
0: सरमन को छींट वाले सफेद वस्त्रों से ढका गया है, जैसे हौद जो होती है
1: जी।
0: ऐसे है, उस पर पालकी है, पालकी में रानी दुर्गावती बैठी हैं
1: जी।
0: उन्होंने हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और अंगरखा जैसा है जिसे उन्होंने कमर पर बांधा हुआ है और उनके कमर में कटार है। उन्होंने सिर पर शिरस्त्राण भी पहना हुआ है, उनके हाथ में तलवार है, उनके आसपास धनुष बाण है
1: जी।
0: इस दृश्य में यह भी दिखाई देता है कि रानी दुर्गावती की गर्दन में एक तीर लगा हुआ है और दूसरा तीर उनके सीने में धसा हुआ है
1: जी।
0: उनका चेहरा कुछ पीछे की तरफ लटका हुआ है और सामने हमको दिख रहा है कि जो उनका हाथी है सरमन
1: जी।
0: उसका जो महावत है आधार सिंह बखिला, जिसने उनसे यह निवेदन किया था कि हम युद्ध क्षेत्र से आपको सुरक्षित बाहर ले जा सकते हैं इस अवस्था में, वो आधार सिंह तलवार लेकर हाथी के ऊपर बैठा हुआ भी रानी को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है
1: जी।
0: इसके साथ ही आसपास के दृश्य में दिखाया गया है कि रानी दुर्गावती के सभी सेनापति ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है और वो मुगल सेना को उनके निकट आने से रोक रहे हैं
1: जी।
0: वहीं दूसरी तरफ मुगल सेना अपने तीर भाले लेकर पूरी तरीके से एकमात्र रानी के ऊपर निशाना साधे हुए है। इस पेंटिंग में एक और देखने वाली बात है, वो ये है कि एक सैनिक तो दो नाली बंदूक लिए हुए भी है।
1: मुगल सेना के सैनिक?
0: जी हाँ, मुगल सेना का सैनिक एक बड़ी सी दोनाली बंदूक भी रानी की ओर ताने हुए है।
1: अच्छा।
0: तो तोपखाना भी उनके पास था, दोनाली बंदूकें भी थी और तीर बर्छे, हाथी घोड़े ये सब तो थे ही। तो ये ठीक उस क्षण का दृश्य है जब रानी दुर्गावती को दोनों तीर लग चुके हैं और उन्होंने युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने को मना कर दिया है और उनके सभी लोग उनको बचाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।
1: इतिहास के पन्नों से की 9वीं कड़ी में आज हमने पूजा जी से जो बात करी, हम इतने दिनों से रानी दुर्गावती की दास्तान सुन रहे थे और आज के अंक को, आज के एपिसोड को सुनने के बाद हम ये जान पाए कि किस तरह जो आज शौर्य गाथा गाई जाती है वो किस तरह रानी दुर्गावती ने खुद अपने ही हाथों अपनी कटार से लिखी थी, अपने पराक्रम से लिखी थी। उन्होंने कतई हार नहीं मानी, ना अपने आप को दुश्मनों के सुपुर्द किया, ना ही वो रणक्षेत्र छोड़कर भागी। वो एक लगभग निश्चित पराजय जब उनकी होने वाली थी तब भी उन्होंने किसी भी तरह से हार नहीं मानी, आखिर समय तक वो लड़ती रही और अंत तक उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। निश्चित रूप से ये गढ़ा के गोंड राज्य की विजय गाथा है, एक महान वीरांगना की विजय गाथा है। तो श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे इतिहास के पन्नों से, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों को समेटकर हमारे लिए जो जानकारियां लाई हैं वो हैं मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। फिर एक बार पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अनुपम जानकारियां आप हमें दे रही हैं, इतनी अनूठी जानकारियां हमें आप दे रही हैं। गढ़ा के गोंड राज्य की दास्तान आगे भी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है अब आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। इसी वादे के साथ अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। डॉक्टर पूजा सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में थी पुरातत्वविद के रूप में, ध्वनि संयोजन और ध्वनि संपादन का कार्य संभाला अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे AI पर। टेक गुरु के संग में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने AI विषय पर पहले बात की थी, बात आज भी करेंगे AI पर, लेकिन आज जानेंगे AI से क्या कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट कंप्यूटर ही है, या कंप्यूटर के बाद ये रिप्लेसमेंट मानव को भी करेगा, और ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस विषय की जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर अनुग्रह।

0: से अभी को अलग तरह की एप्लीकेशन समझाएगा और दसवीं या कॉलेज के लेवल को, क्या ही सही बात है?
1: देखिए एआई एक ऐसा मान लीजिए कि वो एक सर्व सुविधा युक्त जिन है, पॉपुलर कल्चर के एक उदाहरण में दे रहा हूँ। अब उससे आप वरदान में कंघा भी मांग सकते हैं और बाल भी मांग सकते हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा वो जवाब देगा। इंटरनेट के बारे में भी यही कहा जा सकता है, आप एंटरटेन भी हो सकते हैं और उसकी मदद से कुछ सीख सकते हैं। तो एआई भी ऐसे ही है, अगर सही तरीके से प्रॉम्प्ट किया जाए तो यकीनन वो मतलब बहुत अच्छा टीचर बनाया जा सकता है, बशर्ते उसके ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब कौन से डेटा से ट्रेन किया हो इस बारे में हमको ट्रांसपेरेंसी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ इसका ट्रेनिंग डेटा सेट कहीं बायस नहीं है। तो एआई के हर आउटपुट पे और ट्रेनिंग डेटा सेट पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हो रहा है तो एआई की मदद से फर्स्ट क्लास का लड़का, उसके लिए उसके हिसाब से, उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से एक अलग कोर्स तैयार किया जा सकता है सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट के द्वारा, और पांचवी कक्षा के लिए अलग किया जा सकता है, दसवीं के लिए अलग, बारहवीं के लिए अलग। मैंने बताया ना, ये हर किसी को उपयोग करके देखना चाहिए चैट जीपीटी की। इमेजिन यू आर अ टीचर, एक्सप्लेन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ले लीजिए, कोई भी जियोपॉलिटिकल विषय ले लीजिए, एनी टॉपिक टू मी लाइक आई एम अ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, और वो बड़े अच्छे से क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट के लेवल के आधार पे से, अब उसके डेटाबेस में, ट्रेनिंग डेटाबेस में क्लास फिफ्थ के बच्चे का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है कि वो क्लास फिफ्थ के बच्चे को कैसे परसीव करेगा, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है।
0: आपने चैट जीपीटी का नाम लिया, एक सामान्य आदमी के लिए अपन बात करते हैं, जो लोग इससे रूबरू हो गए हैं मान लेते हैं और जो नहीं हुए, एक चैट जीपीटी एक ऐप है, इसको डाउनलोड करना है और फिर वो संभवतः टेक्स्ट को लेकर, ऑडियो को लेकर या वीडियो को लेकर अलग अलग जानकारी दे पा रहे हैं, ये मान लेते हैं अपन। इसके अतिरिक्त कोई और ऐप या कौन से टूल्स?
1: बहुत सारी है। देखिए चैट जीपीटी तो सबसे ज्यादा फेमस हो गई, वो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो कहते हैं अपन 2022 के एंड में आया और बस वो पूरी दुनिया में छा गया। फिर ये इस साल की शुरुआत में वो गिबली आर्ट इमेज

0: इमेजेस से कार्टून बनाना,
1: जितने लोग उस टाइम की सबसे मौलिक प्रश्नों को समझने में मदद की, उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के महान सपूत के रूप में याद किया और कहा उनका जीवन युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। MIT ने उनके सम्मान में एक स्मारक व्याख्यान श्रृंखला स्थापित की। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ने उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, वहां उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया।
2: भारत सरकार ने 2018 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें याद करते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने उनके नाम पर पुरस्कार और फेलोशिप स्थापित की। प्रोफेसर खुराना का जाना विज्ञान जगत के लिए अपूर्णीय क्षति था। उनका जीवन सत्य शोध

0: पान व्रत के लिए स्वामी जी ने जिन्हें बुलाया उन्हें विशेष रूप से ये याद रखने के लिए,
1: तुम ही लोगों पर भरोसा है, मैं 12 वर्ष तक हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस चिंता को लेकर घूमा हूँ। मैं तथा कथित अनेक धनी व बड़े आदमियों के घर गया हूँ, उन्होंने मुझे पाखंडी समझा है। लगभग 1 शताब्दी से हमारा देश समाज संस्कारकों तथा उनके तरह तरह के समाज संस्कार संबंधी प्रस्तावों से श्रस्त होता रहा है, परंतु साथ ही ये भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 100 वर्ष के संस्कार आंदोलन द्वारा समग्र देश का कोई भी स्थायी कल्याण सिद्ध नहीं हुआ है। गत शताब्दी में जिन सब संस्कारों के लिए आंदोलन हुआ है उनमें से अधिकांश दिखावे के ही थे। संस्कार की वे चेष्टाएं केवल उच्च वर्णों से संबंधित थी, अन्य वर्णों से नहीं। संस्कार करना हो तो ऊपर ऊपर देखने से काम ना बनेगा, भीतर प्रवेश करना होगा, जड़ तक जाना होगा। 10 वर्षों से भारत वर्ष के अनेक स्थानों में घूम फिरकर मैंने देखा कि समाज सुधार के लिए सभाओं तथा समितियों से देश छा गया है, परंतु असल में जिनका रक्त चूसकर भद्र कहलाने वाले व्यक्तिगण भद्र पुरुष बने बैठे हैं, उन निर्धन सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए कोई सभा मैंने कहीं नहीं देखी।
0: स्वामी जी ने अपने पूर्ववर्ती समाज सुधारकों की दोष त्रुटियों को निर्भीकता के साथ दिखाते हुए इस सिद्धांत पर पहुंचने के लिए मजबूर हुए कि
1: सुधारकों का उद्देश्य व्यर्थ हुआ है, और इसका कारण ये है कि उनमें से

0: जिसके अभाव में उसका विनाश या मृत्यु अनिवार्य है। भारतीयों की जातीय विशेषता क्या है ये वे भी नहीं समझे और न इस विषय में आत्मरक्षा की किसी प्रकार चेष्टा ही उन्होंने की। अपने देश या अपनी जाति के नाम पर कोई सार्थक अभिमान भी सुधार युग में न था।
1: संस्कारकों की कार्यप्रणाली को स्वामी जी श्रद्धा की दृष्टि से देखने में असमर्थ रहे। उंगली पर गिने जाने योग्य कुछ अंग्रेजी शिक्षित नागरिक वो उच्च वर्णों के बीच जो आंदोलन सीमित था वो समाज के सभी स्तरों में अलग नहीं फैला। इसका कारण हमने पहले ही बताया है, जातीय जीवन से विजातीय तथा वैदेशिक भाव में अनुप्राणित संस्कारों को लक्ष्य कर स्वामी जी ने अपने निजी आदर्श की इस प्रकार घोषणा की।
0: संस्कारकों ने समाज को तोड़ मरोड़ कर जिस रूप में समाज संस्कार की प्रणाली प्रदर्शित की है उसमें वे सफल ना हो सके। इन संस्कारकों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनसे बड़ा संस्कारक हूं। वे थोड़ा थोड़ा संस्कार चाहते हैं पर मैं चाहता हूं जड़ से संस्कार। हमारा उनका भेद है केवल संस्कार की प्रणाली में। उनकी राह है तोड़ डालने की और मेरी प्रणाली है संगठन की। मैं संस्कार में विश्वास नहीं करता, मैं स्वाभाविक उन्नति में विश्वासी हूं।
2: पाश्चात्य देश से लौटकर स्वामी जी ने केवल ध्वंस मूलक संस्कार आंदोलन से ही अपने को पृथक नहीं कर लिया, वरन दूसरी ओर ये भी कह दिया कि सब प्रकार की सामाजिक उन्नति के विरोधी, प्राचीन समाज के युक्तिहीन कुसंस्कारों के भी वे पक्षपाती नहीं है। वे ये भी नहीं मानते कि समाज में किसी विशेष भाग से कुछ आचार व्यवहार को उठा देने भर से अथवा कुछ नवीन आचार व्यवहार को प्रचलित कर देने से ही जाति की उन्नति होगी। उन्होंने हमें बार बार बताया कि
0: अपनी सब प्रकार की दुर्दशा